मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1189 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि तदनुसार 23 जून 2026। श्रोताओं, हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा

कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रेवा केंद्र है। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मातृवंदना से।

0: इसी भजन के साथ सुप्रभातम का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वी पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। ये समय है किसान भाइयों के कृषि संकेत का। आज का विषय है जैविक कीटनाशक का निर्माण।
1: हम बच्चे बुवाई के तर तैयारी कर रहे हैं और कईक मेर की फसलन माही कईक मेर की कीट लागत है और कीट जौन होते वही अपने फसल का ही मार देते। बहुत ऐसा कीट होते कि मनई के जाने नहीं मिलता है और पता चला कि जब अपन उपराज घट गए तो बड़ा अकरास लागत है। एक खातिर कईक मेर की दवाई हुई कीटनाशक रासायनिक दवाई है पर दवाई जो होती है कहाँ न कहाँ फायदा करती है पर उसे अपने फसल का ही या अपने प्रकृति का ही नुकसान होता है। ऐसे जौन जनबहा है जौन कृषि वैज्ञानिक है वो जैविक कीटनाशक के प्रयोग करे के हमेशा सुझाव देते पैमान ले जब अधिकतर ज्यादा जरूरत ही तब रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग करे चाहिए। जैविक कीटनाशक है उनका निर्माण कैसन कर सकत है और उकर उपयोग कैसन करे जोने से अपने फसल में ही फायदा हो। ऐसा एक विधि है कब मूत्र से हम पंचे निकहा जैविक कीटनाशक बना सकी थे और उकर असर जो होते है वह बहुत निकहा होते है। एक खातिर 20 लीटर कब मूत्र ले ली 20 लीटर मूत्र माही 2.5 किलो नीम के पत्ती का पीस के ओका चटनी बना ले चाहिए और वह 20 लीटर मूत्र माही मिला दे चाहिए। पत्ता से अच्छा होता है कि अगर नीम के निमौली मिल गए तो वह और ज्यादा फायदेमंद होता है और निकाह काम करते है। एहन मेर दूसरे पत्ता होते है धतु

0: के दतूरा के पत्ता का ही लगभग 2.5 किलो वजन के हो और का चटनी बनाए के वही मूत्र माही मिला दे। एक पेड़ होत है आग के, एहू माही आयुर्वेद में बतावा जाता है कि एकर पत्ता बहुत फायदेमंद होत है और एकर लगभग 2.5 किलो पत्तन का ही लय के और मनी चटनी बना ले। और एक अलावा बेलपत्र जौने का हम पंचे शंकर भगवान की चढ़ाई थे, बेलपत्र का ही लगभग 2.5 किलो की चटनी बनाई की एहू का मिलाई और सीता फल के पत्ता घलाई ले ली ओहू का ही चटनी बनाई के और मिला दी। और एमा लगभग 0.5 किलो से 750 ग्राम तक तंबाकू के पाउडर डार दे चाहिए और साथ है 1 किलो लाल मिर्ची के पाउडर में मिला दी। और जो मान ली मिल गया तो बेसरम के पत्ता 2.5 किलो डार दी। एमे से 5-6 तरह के जो पत्ता हुए थे ओका मनाई 2.5 किलो के और ओका चटनी बनाए के अब 20 लीटर गौमूत्र है के ही ओका लय के पहले तो ओका एक मिश्रण मनाई बना ले फिर ओका उबाल ले चाहिए। उबाला समय 0.5 किलो जिसे हम बतौबे बहन की 0.5 किलो से 750 ग्राम तक तम्बाकू पाउडर डाल दे चाहिए और एक बढ़िया से उबाल ले चाहिए। एक उबाल के ठंड कर ले और ठंडा करके एक छान के बोतल में धो ले। और यह ऐसा माने जैविक कीटनाशक बन जाता है कि जो उनकी गहूं खराब नहीं होता है यह कीटनाशक जो तैयार होगा। अब एक डारी कैसन के एक अपन विधि है जितना कीटनाशक ले उमा 20 लीटर पानी मिलाई। अगर 1 लीटर कीटनाशक लिहन है तब 20 लीटर पानी मिलाई और मान ले 10 लीटर कीटनाशक लिहन है तब वहाँ 200 लीटर पानी मिलाई। माने मनैया अंदाज ले कि हम पंचे कितना या कीटनाशक तैयार कर रहे हैं और उसके अनुसार उसे 20 गुना ज्यादा पानी मिला दी। और पानी मिलाए कि जब एक मनई खेत माही छिड़का तो एक परिणाम जो हुआ था वो 2 से 3 दिन के अंदर है फसल माही देखा के मिल जाते। उमा जौन कीट जंतु दिखाई देते वही 2-3 दिन बाद फिर उनका पता नहीं लगे कि वही कहाँ चले गए। यह इतना प्रभावशाली कीटनाशक बनकर तैयार हो जाता है कि जो उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनी की जो कीटनाशक है उनसे सैकड़न गुना तक ज्यादा ताकतवर होता है और एमा खर्चा बहुत कम लागत है और एक तरह से कही तो खर्चा एमा शून्य के बराबर है। काहे के जो देशी गौमूत्र है वो तो अपने घर में मिल जाते हैं। यही मेर जो पत्ता लाग चाहे वो नीम के हो चाहे वो आंख के हो चाहे वो सीताफल के हो और चाहे वो धतूरा के हो ये सब पत्ता हमका पाचन का मिल ही जाते। तो यह सब माने चीजन का मिलाए के हम पंची एक ऐसा जैविक कीटनाशक बना सकी थे जो उनकी अपने खेती खातिर बहुत निखा होता है और ऐसे एक हम पंचे कवनो फसल में उपयोग कर सकी थे ऐसे कवनो मेर से माने दुष्प्रभाव नहीं आए और एक फायदा हम पंचे ले सकी थे। तो यह हम पंचे जो विधि है एक हम पंच इस्तेमाल करके अपने खेती में ही बढ़िया बना सकी थे।
1: अभी कृषि संकेत का प्रसारण हो रहा था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुने रामचरितमानस से पाठ।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते।

करते हैं ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के शाम वरणी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। मीडियम वे पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम आज सवेरे का प्रसारण होगा प्रातः 7:30 पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 9:30 पर शब्द सागर का प्रसारण होगा और जिले की चिट्ठी का वाचन समय होगा 3:10। आकाशवाणी रीवा से चौपाल सजेगी शाम 7:21 पर। सुगम संगीत का समय होगा सुबह 10:05 पर और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का समय होगा सुबह 7:20 पर और सुबह 8:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छभारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन् येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

0: ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागे से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, Prime Minister said the country's achievements over the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Highlighting the government's 12 years in office, Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building. Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity. He stressed that empowering the poor and middle class remained a key priority, citing affordable housing initiatives, tax reforms, healthcare schemes, and improved urban infrastructure. Taking swift action after the tragic fire incident in Lucknow, which claimed the lives of 15 students, the police registered a case against 6 individuals and arrested 4 of them last night. 4 officials from the Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended following directives from Chief Minister Yogi Adityanath. In connection with the fire incident in Lucknow, Aliganj police have registered an FIR under relevant sections of the BNS and the Uttar Pradesh Fire Service Act against 6 named accused and other responsible persons.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था वाला देश बना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश, स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज से शुरू होगा विशेष पखवाड़ा, प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी

0: खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले हजार वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को जन सामान्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा जिला विकास समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन आज देवास जिले के कन्नौज तहसील के डोकाकुई गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान डॉ. मुरुगन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। इस अवसर पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, संतान, दत्तक नियम जैसे विभिन्न विषयों पर राय दी। इस उच्च स्तरीय समिति में सदस्य और उत्तराखण्ड के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और डॉ. शोभा बेथनकर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर, समाजसेवी बुद्धपाल सिंह ने सुझाव रखे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: प्रदेश में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक दायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल अचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्यप्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 का समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों और डिजाइन हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से वो संवाद करेंगे। नरसिंहपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई गोल्डन आवर हीरो अभिनव पहल ने जिले में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इस अभियान के प्रभाव से जनवरी से मई 2026 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 33%, मृत्युदर में 23% और तथा गंभीर घायलों की संख्या में 52% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद का पहला आधा घंटा गोल्डन आवर घायल व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबों पेट्रोल पंप संचालकों स्थानीय ग्रामीणों को चिन्हित कर उन्हें CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण

प्रदान किया गया। उज्जैन में अगले वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सागर पुलिस लाइन सभागार में पुलिसकर्मियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की चौथे बैच का कल शुभारंभ किया गया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। 2024 में चीन ने हुलुनबुयर में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला है। 2024 में हुए मुकाबले में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी। प्रदेश में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर मंडला दमोह उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर श्योपुर मुरैना भिंड दतिया शहडोल अनूपपुर डिंडौरी बालाघाट सिवनी भोपाल सीहोर हरदा देवास खंडवा बुरहानपुर खरगोन इंदौर धार बड़वानी आलीराजपुर और झाबुआ जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में रबी मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली और एक जिला एक उत्पाद में चयनित इंदौर के मालवी आलू को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल गई है। खंडवा में आगामी मुहर्रम पर्व के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है। तंबाकू नियंत्रण और तंबाकू मुक्त युवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आगरमालवा में कल कार्यशाला हुई, जिसमें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा हुई। झाबुआ कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से बामनिया क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। कटनी में राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कटनी के 17,000 नागरिकों ने ऑनलाइन लिखित रूप से अपने सुझाव शासन को प्रेषित किए। डिंडौरी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत

मीडियम वे पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में जाने से पहले आइए हम जानते हैं अच्छी नींद के लिए योग क्यों जरूरी है। अच्छी नींद के लिए योग का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। योग सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको नींद की गुणवत्ता यानी स्लीप क्वालिटी को कई तरीके से सुधारती है। तनाव और चिंता में कमी होती है। नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव होता है। योग करने से शरीर में कोर्टिसोल का स्तर कम होता है और मेलाटोनिन नींद के जिम्मेदार हार्मोन का उत्पादन बढ़ाता है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो नींद जल्दी आती है और गहरी आती है। नर्वस सिस्टम को शांत करना। हमारा शरीर अक्सर भाग दौड़ के कारण तनाव की स्थिति में रहता है। योग, विशेष रूप से धीरे धीरे किए जाने वाले आसन और प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम को आराम के मूड में ला देते हैं, जो गहरी नींद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दिन भर की भाग दौड़ और उठने बैठने के कारण शरीर में जकड़न सी आ जाती है। योग के आसन शरीर की मांसपेशियों को ढीला और रिलैक्स करते हैं, जिससे बिस्तर पर लेटने के बाद शरीर में बेचैनी नहीं होती और आप जल्दी सो पाते हैं। प्राणायाम का असर। योग में किए जाने वाले प्राणायाम जैसे भ्रामरी या अनुलोम विलोम दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हैं और मन को स्थिर करते हैं। यह मस्तिष्क को संकेत देते हैं कि अब सोने का समय हो गया है। सोने से पहले किए जाने वाले कुछ आसन इस प्रकार हैं। बालासन,

विपरीत कर्णियासन और शवासन। शवासन यह सबसे ज़रूरी है। लेटकर अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, यह आपको गहरी नींद मिले जाने के लिए सबसे उत्तम है। सोने से ठीक पहले बहुत भारी एक्सरसाइज ना करें। योग का उद्देश्य शरीर को शांत करना होता है, ना कि उसे थकाना।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। निरिमी पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम आज सवेरे का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
1: नमस्कार मनोज। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू हियर अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। Happy Tuesday, friends. Get your cup of tea or coffee and settle down as we kickstart the program with some news headlines.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीद

0: खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो सेवा से प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा हो रही है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
2: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second Civil Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The second Civil Investiture Ceremony of 2026, today the President will confer 65 Padma Awards. A report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mammootty, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
2: On this occasion, we are broadcasting special programs as part of our series, People's Padma on Akashwani.
4: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है, इसलिए जो है सुबह को 4-5 घंटे या 3 घंटे काम किया जाता है।
5: So finally, idea for human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
6: जब हमारे मजारिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित बच्चे हैं या सिख बच्चे हैं, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी, या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
7: डिजाइन मेनी इक्विपमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स, एक्चुअली कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मटेरियल्स लाइक रेजिस्टिविटी, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर विच इज अ वेरी सेंसिटिव प्रॉपर्टी, ऑल दिस थिंग्स वी डेवलप्ड इट आवरसेल्फ एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट।
8: मेरा एडमिशन हुआ वहाँ से, पीएचडी तक की पढ़ाई में थी, पीएचयू से की और बराबर स्टेट प्रोग्राम फिर मैं करने लगी, जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला, मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई।
9: 10-12 वर्षापासून मैं तो सिखाय लागलो बनाता माल, इकडे व्यवसाय नहीं।
10: आई स्टार्टेड लर्निंग द तारपा व्हेन आई वाज 10 to 12 years old. This ancient art is a matter of pride for us Adivasis, and we have preserved it.
11: My mama, when he came to know that I too have hemophilia, he used to tell me he should become a doctor or do some research in this field.

0: Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees. The programs will be broadcast today on 100.1 Akashwani Go from 9:10 a.m. onwards. They can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
1: लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामित अभियुक्तों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने अलीगंज में इस इमारत को सील कर दिया है, परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। फॉरेंसिक यूनिट और फायर ब्रिगेड की टीम यहां से जांच के लिए सबूत एकत्र करेगी। इस घटना के बाद संबंधित इमारत को लेकर विकास प्राधिकरण की पहले की कार्रवाई और पुराने रिकॉर्ड जांच के दायरे में आ गए हैं। वर्ष 2016 में अनाधिकृत निर्माण को लेकर इस इमारत को गिराए जाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में यह आदेश रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
0: Union Cooperation Minister Amit Shah will launch the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, NAFED, auction portal in New Delhi today. The launch of the portal is an important step towards strengthening transparency, efficiency and ease of operations in the auction process. The portal is expected to provide a digital platform for streamlining auction-related activities, enhancing the overall functioning of NAFED in the interest of farmers, member institutions and stakeholders.
1: यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल उर्वरक भंडार 196 लाख टन है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक ये आंकड़ा 168 लाख टन था। मंत्रालय के अनुसार आयातित उर्वरकों की खेप से देश में मौजूद उर्वरक भंडार अधिक समृद्ध होगा तथा किसानों की कृषि आवश्यकताएं पूरी होंगी।
0: Indian Embassy in Doha has announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in the Ras Laffan incident Sunday night. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. External Affairs Minister Dr. Jaishankar has expressed grief over the loss of lives and injuries, including those of Indian nationals.
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमेरिकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। गैर वरीयता प्राप्त सानीत दयानंद जापान के युदाई ओकीमोतो के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे, जबकि एस शंकर मुथुसामी सुब्रमणियम राउंड ऑफ 32 में एक क्वालिफायर खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन लीग के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा के इंडोनेशिया के वेरावन इहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे।
0: In the opening match of the London round of the FIH Pro League, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan today. This will be the first encounter between India and Pakistan since the Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. In the FIFA World Cup, France defeated Iraq 3-0 in a group one match at Philadelphia Stadium early morning to secure their passage to the knockout stages. Earlier, Argentina defeated Austria 2-0.

0: nil in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32.
1: और अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल कर दिया है। यह निर्णय दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विस अधिनियम 2011 के अंतर्गत लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को लाभ होगा।
0: Going to Chennai now. Traffic police registered 2,825 cases during a special enforcement drive conducted across the city between June 19 and 21 to curb traffic violations, improve road safety. The three-day operation was carried out to ensure safe and accident-free movement of vehicles. A total of 355 traffic police personnel were deployed with 122 vehicle checkpoints established at strategic locations. Bengaluru News now. A Karnataka delegation led by former Minister and MLC N.S. Bose Raju met Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu and Irrigation Minister Nimmala Rama Naidu to invite them to the June 25 celebration marking the successful replacement of all 33 gates of Tungabhadra Dam. Hyderabad News now. Telangana Academy for Skill and Knowledge and Society for Elimination of Rural Poverty have signed a Memorandum of Understanding to enhance skills, digital literacy and financial awareness among self-help group women across the state. Officials said the agreement aims to strengthen women economically and socially. Under the MOU, women will receive training in banking, correspondent services, digital and financial literacy, business management, entrepreneurship and sustainable livelihoods. And Manoj, over to you now for rest
1: of Maharashtra, Mumbai ki khabar. Maharashtra sarkar ne somvar ko मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में 97,706 करोड़ 40 लाख रुपए की पूरक मांगे पेश की। इनमें सबसे अधिक 20,552 करोड़ रुपए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण माफी योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद केंद्र की राज्यों के लिए पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के लिए 10,007 करोड़ 10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रस्तावों में विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 7,367 करोड़ 32 लाख रुपए और सिंहस्थ कुंभ मेले की योजना और कार्यान्वयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता ने कल विधानसभा में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध बजट पेश किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार ये बजट समावेशी है और इसका उद्देश्य विकसित भारत के हिस्से के रूप में विकसित बांग्ला का निर्माण करना है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार के पहले बजट में सामाजिक सुधार, महिला सुरक्षा से लेकर शिक्षा, कृषि उद्योग विकास से लेकर अवसंरचना उन्नयन, पर्यटन पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि की है। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान बनाए रखा जाएगा। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नारी सहायता डेस्क और गश्त के लिए दुर्गा सुरक्षा दल स्थापित किए जाएंगे। और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में आज बारिश के साथ तूफान आने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
0: यस मनोज, चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 27 डिग्रीज मैक्सिमम ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल एक्सपीरियंस जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 20 डिग्रीज वाइल द मैक्सिमम मे रीच 29 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई अगेन विद द possibility of rain or thunderstorm or dust storm. Temperatures are expected to range from 26 degrees to 39 degrees Celsius. And Manoj.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। उससे
0: yes.
1: पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना।
0: Yes, on this day, that is June 23rd, the entire world, the world comes together to observe United Nations Public Service Day. This annual event, of course, honors the dedication of public servants around the globe, and it serves as a reminder of the hard work, the toil that happens behind the scenes in our local and national governments. This is rooted in the values of transparency, inclusion, and accountable governance. The Public Service Forum is the United Nations flagship global platform dedicated to strengthening the capacity of public institutions and promoting effective, responsive, and of course, people-centered service delivery. And you know, this year, the government of Georgia is proud to host the Public Service Forum 2026 under the theme Transforming Public Institutions, Advancing Innovations, Accountability, Participation, and Inclusion.
1: 23 जून का दिन देश और दुनिया के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। 1953 में आज ही के दिन जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में कैद के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। 1980 में आज ही के दिन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। 1994 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा हुई।
0: And you know, in the year 630, that is really going way back, world's oldest parliament, the Icelandic parliament, was established. And 1894, International Olympic Day was established in 1948 by the International Olympic Committee to commemorate its founding in Paris on this date in 1894. This is interesting, in the year 1868, William Latham Scholes patents his invention with a QWERTY keyboard called it, and then of course he called it the typewriter. And also in 1860, the United States office establishes the first government printing office. In 1930, the Simon Commission recommends a federal India and the separation of Burma. This took place in London. And in 1969, IBM announced a decision to price its software and services separately from hardware, thus creating the modern software industry.
1: 1995 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 50 वर्ष के इतिहास में 100वां प्रस्ताव पारित किया। 2008 में आज ही के दिन प्रसिद्ध अभिनेता सौमित्र चैटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की। 2008 में आज ही के दिन टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मैक्सिको की टायर कंपनी टोनल और उसकी सहायक कंपनियों सहित 270 करोड़ डॉलर का अधिग्रहण किया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
0: Birth anniversary of famous British computer scientist, mathematician, Alan Turing. He made major contributions to mathematics, cryptanalysis, logic, philosophy and biology, and to the new areas later named computer science, cognitive science, artificial intelligence and artificial life. Turing was born this day in 1912.
1: आज पुण्यतिथि है अभिनेता, नाट्यकार, बहुभाषी कवि और गीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की। वे सरोजिनी नायडू के छोटे भाई थे, जिन्हें हिंदी फिल्मों के मशहूर गाने जैसे रेलगाड़ी फिल्म आशीर्वाद के लिए याद किया जाता है। आपकी मुख्य फिल्में साहेब बीबी और गुलाम, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, सत्यजीत राय की सोनार किला आदि हैं। आइए सुनते हैं उनका लिखा गीत रेलगाड़ी।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी,

आज जयंती है रहमान की। उनका जन्म 23 जून 1921 को हुआ था। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिनका करियर 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक के अंत तक रहा। वे गुरुदत्त की टीम का अभिन्न हिस्सा थे और उन्हें प्यार की जीत, बड़ी बहन, प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम, दिल ने फिर याद किया, छोटी बहन और वक्त जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया छोटी बहन फिल्म का ये गीत।

आज जन्मदिन है डॉक्टर जब्बार पटेल का। उनका जन्म 23 जून 1942 को पंढरपुर में हुआ है। वे भारत के एक मराठी भाषा के थिएटर और फिल्म निर्देशक हैं। 1973 में उनके द्वारा निर्देशित विजय तेंदुलकर का नाटक घासीराम कोतवाल आधुनिक भारतीय रंगमंच में एक क्लासिक माना जाता है। वे मराठी सिनेमा में क्लासिक फिल्मों के निर्माता हैं, जैसे समना, जैत रे जैत, उम्बरथा, सिंहासन। उनकी कुछ अन्य फिल्मों में मुक्ता, एक होता विदूषक और मुसाफिर शामिल हैं। उनकी सबसे प्रशंसित फिल्म है 1999 की डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने अपनी मराठी फिल्म मुक्ता के लिए 1995 में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म जैत रे जैत का ये गीत।

परिवार में हुआ था। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 1975 बैच के छात्र रहे हैं। नई दिल्ली में अभिनय का प्रशिक्षण लेने के बाद वे बॉम्बे चले गए और 1970 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू में एक भयानक रोल से उन्हें काफी चर्चा मिली। इसके बाद वे बी आर चोपड़ा के बैनर की फिल्मों का अहम हिस्सा बन गए। दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ निकाह और स्मिता पाटिल के साथ आज की आवाज में नजर आए। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में भी सफलता हासिल की। आपकी मुख्य फिल्म में आप तो ऐसे ना थे, अगर तुम ना होते, इंसानियत के दुश्मन, आंखें आदि हैं। आइए नजर डालते हैं उनकी कुछ गीतों और उनके संवाद पर।

कभी किसी अबला का, कभी सारे समाज का, गली गली में इंसानियत का खून हो रहा है, हमारी आजादी का खून हो रहा है और हम चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, कानून कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मुझे पिस्तौल उठानी पड़ी।

0: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
3: 2014

0: ओडिशा में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे, और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदान का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं।

0: घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वही महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस

0: अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी

मीडियम वे पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉर्डर का ही गाना। फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं फिल्म एलओसी का ही अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म वीर ज़ारा का ये गीत। फिल्म संगीत में आइए अब सुने फिल्म स्वदेश की पेशकश।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन।
2: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मीडियम वी पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने को है। कुछ ही क्षणों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता, विषय होगा भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, और डॉक्टर सुभाष जाटव का काव्य पाठ आप सुनेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता, भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप।
1: नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारतीय पत्रकारिता के बदलते स्वरूप की। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज भारतीय पत्रकारिता का स्वरूप प्रिंट और टेलीविजन से आगे बढ़कर डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में प्रवेश कर चुका है। आज ब्रेकिंग न्यूज़ और त्वरित प्रतिक्रिया ने पारंपरिक संपादकीय मूल्यों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। इससे एक तरफ सूचना का लोकतंत्रीकरण हुआ और दूसरी तरफ इसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता और बढ़ गई है। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, मूल्यों और समाज सुधार की मजबूत नींव पर खड़ा है। आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारे देश ने विकास की यात्रा को तय करना शुरू किया, विकास के मापदंडों को छुआ, उससे यह तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। पत्रकारिता का विकास भी ऐसे ही होता जाता है। आज की पत्रकारिता केवल गली मोहल्लों तक सीमित नहीं रही है। आज एक गाँव की चौपाल से लेकर बड़े बड़े शहरों की एक्टिविटीज़ को मिलाती है और एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। आज पत्रकारिता के जरिए ही हम लोग जान पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। पत्रकारिता के कई रंग रूप समय के हिसाब से बदलते जाते हैं। आज की पत्रकारिता तकनीकी पत्रकार से कंधा मिला के चल रही है। आज खबरें आपका इंतजार नहीं करती, अगर हम लेट होते हैं तो वो किसी और एंगल से फ्लो हो जाती हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य आम जनता की आवाज़ उसके लिए पहुँचे ये साधन होना चाहिए। आम आदमी का क्या हक है, उसकी क्या दिक्कतें हैं और उसको किस तरह से दूर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक सेतु है सरकार और जनता के बीच का। ये सेतु दोनों को आपस में मिलाता है, उसके साथ ही लोगों की मानसिकता बदलती है, हालात सामने आते हैं और विकास का तरीका तेजी से आगे होता है। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के इस दौर में पत्रकारिता का परिदृश्य काफ़ी कुछ बदल गया है। हकीकत तो यह कि आज प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न की सीमाएं टूट रही हैं और सूचनाएं सीधे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रही हैं। यह बदलाव जितनी तेज़ी से हुआ है उसने पत्रकारिता के स्वरूप और उसके नैतिक मूल्यों को और भी गहराई तक जाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे समय में डिजिटल मीडिया के उदय का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब सूचनाओं का केंद्र बदलता जा रहा है। अब खबरों के लिए आम जनता को अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। सोशल मीडिया और नागरिक पत्रकारिता के माध्यम से देश के सुदूर कोनों से आ रही आवाज़ों को भी आसानी से सुन और समझ पाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स समाचारों के प्राथमिक स्रोत बन गए हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

डीप फेक टेक्निक ने भ्रामक सूचना और फेक न्यूज़ के जाल को अलग अलग कर दिया है। सोशल मीडिया भी इस तरह से काम करता है कि वे दर्शकों को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन इससे समाज के कई एंगल सामने आ रहे हैं। ऐसे दौर में एक निष्पक्ष और जिम्मेवार पत्रकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़ी बात है कि पत्रकारिता के बुनियादी मूल आज भी नहीं बदले हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य की खोज और जनहित आज भी वही है। माध्यम चाहे अखबार हो, टीवी चैनल हो या डिजिटल पोर्टल या फिर कोई और दूसरा साधन, हर जगह विश्वसनीयता ही किसी भी तरह की पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी है। डिजिटल युग में तो हालत यह है कि पत्रकारों और संपादकों का दायित्व बढ़ गया है। यह कह सकते हैं कि इस समय भारतीय पत्रकारिता एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब इसकी पहुंच और विस्तार बहुत तेजी से बढ़ गया है, लेकिन इसके नैतिक पतन को रोकना भी समाज और लोकतंत्र के हित में अत्यंत आवश्यक है। निष्पक्ष पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होती है। तकनीक के इस नए दौर में यदि पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता, साहस और सामाजिक सरोकार को बनाए रखती है तो उसका भविष्य उज्जवल है और लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। लेकिन अब हमको यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया ने भावी पत्रकारों को पेशेवर तरीके से जिस तरह से फिल्में पेश करने का काम शुरू किया है उससे काफ़ी बदलाव आ रहा है। इस दिशा में पूरी दुनिया में काम हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों ने अपने अपने छात्रों को डिजिटल रणनीतिकार के रूप में भी अपने कैरियर को तैयार करने के लिए कई तरह के सोशल मीडिया पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि नई तकनीक के आगमन से पत्रकारों के कौशल के एक आयाम और बढ़ गए हैं और जो लोग इस कौशल को पूरा कर सकते हैं उनको पत्रकारिता में आगे आने का मौका पहले ही मिलेगा। इन चीज़ों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर और ऑनलाइन कौशल, मल्टीमीडिया, न्यूज़, सूचना और कई ऐसी चीज़ें जिनसे खबरें निकल के आम जनता तक पहुँचती हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया सबसे पहले पहुँचता है और उसमें आने वाली पत्रकारिता की खबरें जनता से सीधी जुड़ती हैं, जिससे पारंपरिक मीडिया, विज्ञापन और जनता के साथ संबंधों के बीच में एक जुड़ाव स्थापित हो जाता है। अब समाचार बुलेटिनों में पत्रकारों की तस्वीर और वीडियो समाचार के साथ दर्शकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले समाचारों कि एक सीमा होती है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन पत्रकारिता ने समाचार पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो और समाचार अभिलेखागारों को एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है, इससे पत्रकारिता के एक बिल्कुल नए आयाम का उदय हो गया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पाठक अब सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल वर्तमान समाचारों तक पहुँच सकते हैं बल्कि वो ऑनलाइन तरीके से उससे जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया भी उसमें दे सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस समय सोशल मीडिया के कारण पत्रकारिता क्षेत्र की व्यावसायिकता का विस्तार हो रहा है। इसमें पेशेवर और सामाजिक लोगों को भी शामिल किया गया है। पत्रकारिता को दैनिक जीवन के व्यापक क्षेत्रों में फैलाने के लिए एक्सपर्ट्स की कमी तलाशी जा रही है और उनको दूर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पर्यावरण पत्रकारिता, पत्रकारिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सोशल मीडिया ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चाओं में ला दिया है। पत्रकारिता पेशे से सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक समाचार का प्रारूप मुद्रित समाचार की तुलना में अधिक प्रमुखता पा रहा है। इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि आज सिर्फ खबरें ही लोगों को नहीं आकर्षित करती हैं बल्कि उनको प्रस्तुत करने का तरीका भी उनको लुभाता है। इस समय अधिकांश मीडिया संस्थानों में जिस तरह की मीडिया साइट हैं उनके माध्यम से अपने अपने दर्शकों को खबरें अधिक से अधिक पहुंचे, इसके लिए हर तरीके से काम किया जा रहा है। आज पाठकों में भी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और डिजिटल मीडिया अपना एक अलग स्थान तेजी से बनाता जा रहा है। सोशल मीडिया के युग में पत्रकारिता आम पत्रकारिता नहीं रही है, इसमें आने वाले नए युवा ऐसे अधिक हैं जो पत्रकारिता को अपने अंदाज में पेश करना चाहते हैं। वो सिर्फ न खबरों के लिए ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं बल्कि वहां का लाइव टेलीकास्ट करके लोगों को भी उससे जोड़ते हैं। यह बात सही है कि खबरों में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिद्वंद्विता शुरू से ही रही है।
और आज भी चल रही है। अब तो यह हालत है कि कई मीडिया संगठन 2400 घंटे संपादकीय सेवाएं न्यूज रूम में उपलब्ध कराकर अपनी प्रक्रियाओं से तर्क

0: तत्काल निकल कर लोगों को अपडेट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अब ग्रामीण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें दर्शकों को तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के महत्व को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं वह भी पत्रकारिता का एक बदला हुआ रूप है। इसमें किसी कहानी या समाचार या किसी अन्य घटना पर अपनी व्याख्या करने के अलावा उस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे लोग खबरों से सीधे जुड़ते हैं और अपना नज़रिया पेश करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें पाठकों और दर्शकों की भागीदारी ऐसी सीधी होती है ताकि उसमें कई बार पत्रकार अपनी गलतियां सुधार भी लेते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर टिप्पणियों या संपादन के माध्यम से तुरंत बदलाव भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से पाठकों और पत्रकारों के बीच एक सच्चा रिश्ता भी बनता जा रहा है क्योंकि दोनों ही टिप्पणियों व्याख्याओं के रूप में एक दूसरे से खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। जो पत्रकार आमतौर पर अपने पाठकों से सीधे बात नहीं करते उनको सोशल मीडिया के जरिए ऐसा करने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर ब्लॉग पत्रकारिता में एक ऐसी चीज़ है जिसमें पत्रकार और उनको जानने वाले श्रोता या दर्शक वह भी उनकी बातों को सुन समझ लेते हैं और अपने रिएक्शन पेश करते हैं। अंत में अपन यही कह सकते हैं कि पत्रकारिता आज के समय से तेज चलने वाली दिशा में जा रही है। सूचना के क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उससे पत्रकारिता अब केवल कमरे में बंद होकर खबरों को संकलित करने की नहीं रह गई है। इसमें समाचार निर्माण, समाचार साझाकरण और सामाजिकरण के संदर्भ को भी पेश किया जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि आज पत्रकारिता केवल खबरों से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जा रही है, यह लोगों को जिस तरह से जोड़ रही है उसका बदलता स्वरूप टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नया नज़रिया पेश कर रहा है जिसका लाभ मानव जाति को आने वाले समय में और मिलेगा और लोग विकास के साथ मापदंडों को देखते हुए अपने आप को इससे जोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता, भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप। शब्द सागर कार्यक्रम में लीजिए अब प्रस्तुत है डॉक्टर सुभाष जाटव का काव्य पाठ।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष जाटव आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा।
3: बन के याचक आ गए हैं द्वार पर हम,

पर हमको दुत्कारोगे या झोली भरोगे। एक अन्य गीत, आधा जीवन स्वप्न तुम्हारे, आधा जीवन या तुम्हारी।

साथ छोड़ो, क्या गलत है क्या सही यह बात छोड़ो, इन प्रपंचों से निरामन भर रखा है, तुमको अपना पात्र सहयोगी मिला हो।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष जाटव का काव्यपाठ। इसके साथ ही शब्द सागर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता, भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, और आपने सुने डॉक्टर सुभाष जाटव का काव्यपाठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोटिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कुनू नेशनल उद्यान के चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया। इस अवसर पर लगाई गई चीता प्रदर्शनी के दौरान राष्ट्रपति ने अवगत कराया कि 49 चीते कुनू में मौजूद हैं। 3 चीते गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर भेजे गए हैं। उन्हें बोत्सवाना से लाए गए चीतों की गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा अपनी बोत्सवाना यात्रा के दौरान 8 चीते रिसीव किए गए थे, जिन्हें कुनू लाया गया है। चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कुनू प्रवास के दौरान चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति मुर्मू को चीता मित्रों ने बताया कि कुनू नेशनल पार्क से लगे सभी गांवों में चीता मित्र मौजूद हैं, जिनके द्वारा चीतों की सुरक्षा के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुनू नेशनल पार्क में चीतों की पुनर्स्थापना योजना को लगभग 3.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। नेशनल पार्क में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को लाया गया है। जिले में इस साल 1 जून से अभी तक कुल 8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक 336.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत वर्षा 822 मिलीमीटर है। जिला प्रशासन द्वारा बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले भर के पिकनिक स्थलों पर लोगों को पानी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी उचित प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत एसडीआरएफ के जवानों को सभी पिकनिक स्थलों पर तैनात किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान इस साल सभी शासकीय भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य किया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर पालिका के शिवपुरी रोड स्थित ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला उपस्थित थे। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सागर जिले के देवरी में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम के माध्यम से 37वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1835 करोड़ राशि का अंतरण किया गया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर ने कहा है कि अनेकता में एकता भारत की पहचान है। किसी भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के लिए जन समर्थन अनिवार्य है। समिति प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर नागरिकों से संवाद कर रही है। प्राप्त सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण सुझाव आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराए जा सकते हैं। कानूनों में सुधार पर विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन श्योपुर द्वारा की गई पहल पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की टीम श्योपुर जिले के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंची, जहां विभिन्न पर्यटन स्थलों का अवलोकन कर पर्यटन गतिविधियों की संभावनाएं तलाशी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, श्योपुर जिले की चिट्ठी अभी आपने सुनी। आलेख था अश्विनी बालूठिया का और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।

इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मीडियम विपरम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

सफल बने अंगारे फिल्म का ये गीत था, मुकेश ने गाया था। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम में अगला गीत बम्बई का बाबू फिल्म से आशा भोसले ने गाया है। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज एस डी बर्मन की।

आरजू फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, हसद जयपुरी ने गीत लिखा था, शंकर जयकिशन की धुन थी। और अब असली नकली फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है, हसद जयपुरी के बोल।

हसन जयपुरी का लिखा गीत सुनवाते हैं आपको, बेटी बेटे फिल्म का गीत। मोहम्मद लफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने इसे गाया है, धुन शंकर जयकिशन की।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का यह गीत था। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। नीला आकाश फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। मदन मोहन ने धुन बनाई है और बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म गीत का ये गीत था और हसन जयपुरी ने बोल लिखे थे। परिवार फिल्म का ये गीत है, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया हुआ, गुलशन बावरा ने बोल लिखे हैं और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की।

0: सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र किशन का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज़ थी। फिल्म थी आज़ाद। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उज्जैन में अगले वर्ष में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्म गुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों से राय जानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है और प्रदेश में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी ख्वाहिश पूरी करेंगे हम इस कार्यक्रम में। पहला

राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये की, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन की, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर की, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी की, और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां हमें अपनी ख्वाहिश भेजते हैं, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। वारिस फिल्म का ये गीत सुनना पसंद किया है, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने इसे गाया है, वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, उत्तम जगदीश ने धुन बनाई।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा की। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। महसवाड़ी तहसील मनकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। भटिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सदस्य। चांद का टुकड़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और विपिन सचदेव ने इसे गाया है, सावन कुमार का लिखा, महेश किशोर की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफे, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और माखीजा परिवार के सदस्य। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल और आशा सपकाल की, दुगई सेलू से चंदू कुलकर्णी हेमलता और परमणी से सी आर कुलकर्णी की, शिवाजी नगर बड़ाली देश से देशमुख परिवार के सदस्य और राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई और सुनैना खोबरखेड़े, खाड़वी जलगांव जामोद से राम धाड़े, दिवाली धाड़े और स्वराज धाड़े की, थिलोरी दरियापुर से सुनैना पवन और तनुज पवन भोड़े की, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक की। यस बॉस फिल्म का ये गीत है। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत जतिन ललित का है और गाया है अभिजीत ने।

0: कहा।
1: कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन की। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया की। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की, और साथ में है विनोद किशोरी। सुनना पसंद किया है विजयी पथ का गीत कुमार सानू और साधना सरगम का गाया। फैज अनवर ने बोल लिखे हैं और अनु मलिक की धुन है। ये पत्र और शामिल कर रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू की।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा यह गीत था। कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया था। फिल्म थी विजयी पथ। इसके साथ ही आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
0: 8700001424।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
3: ये आकाशवाणी का रेवा केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।

0: असलियत का पता लगाने के लिए आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रम भेजा। भुवन मोहिनी राजकुमार को वहां देखकर प्रसन्न तो हुई, परंतु असमंजस में पड़ गई कि राजकुमार किससे मिलने आए हैं, उससे या राजकुमारी चंद्रहासिनी से। भुवन मोहिनी ने जब राजा आदित्य सेन को विजय श्रवा के बारे में बताया तो वे राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाने के लिए बुलाने आए और उसके सम्मान में एक समारोह रखा। सम्मान समारोह से लौटते समय राजकुमार और राजकुमारी चंद्रहासिनी की मुलाकात हुई। अब आगे सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।
1: आरण्यक महोदय, अब हमें लौटना होगा।
2: क्यों?
1: देखो, राजकुमार जी और हमारी सखी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रथों की ओर जा रहे हैं।
2: हाँ, परंतु मणिहार का क्या होगा?
3: उसने अपना मूल्य तो चुका दिया।
2: आए?
3: ना भी मिले तो क्या है।
2: अच्छा, ऐसा है तो फिर चलो। अरे भाई सारथी मित्रों, अपने अपने रथों को आगे बढ़ाओ।
3: मुझे पुरस्कार चाहिए, मुझे पुरस्कार चाहिए। मैंने राजकुमारी का हृदय हार खोज लिया।
2: कहाँ था?
3: यहाँ गिरा था।
4: राजकुमारी जी को बधाई।
5: किसके लिए?
4: मणिहार के लिए।
5: इतनी तुच्छ वस्तु के लिए क्या बधाई? मुझे तो आज संसार की संपूर्ण निधि प्राप्त हो गई। लग रहा है मानो मैं वायु में उड़ रही हूं।
4: विदा, अब अपने रथ पर सवार होइए।
2: चलो भाई, रथों को आगे बढ़ाओ। बस यहीं से हमारे रथों के मार्ग अलग अलग हो जाएंगे।
3: आरण्यक महोदय, अपने मित्र से कहिएगा कि शीघ्र ही पुनः दर्शन दें।
2: अवश्य अवश्य।
6: राजकुमारी जी, क्या मैं आपके कक्ष के भीतर आ सकती हूँ?
5: अरे आओ आओ भुवन मोहिनी, मैं तो कब से तुमसे मिलना चाह रही थी।
6: तो फिर बुलवाया क्यों नहीं? आपकी दासी हूँ। अरे ये मणिमाल आपके गले में
5: क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है?
6: बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने भेंट किया आपको?
5: हाँ, भारत के भावी सम्राट ने, मेरी विजय श्रवा ने।
6: ओह
5: भुवन मोहिनी, अरे क्या हुआ? तुम्हारा मुखड़ा अचानक मलिन क्यों हो गया?
6: नहीं तो?
5: तो फिर मुझे भ्रम है।
6: हो सकता है।
5: क्या तुमसे भावी सम्राट का अतीत में कोई एकांत मिलन हुआ था?
6: मुझसे? मुझसे क्यों? कहां भावी सम्राट और कहां भ्रष्ट दलित एक क्षुद्र नर्तकी।
5: अरे भाई, राजकुमार तुम्हारे अनन्य उपासक हैं, इसलिए पूछ रही हूँ।
6: कौन कहता है?
5: मैं कहती हूँ।
6: अच्छा, इसका प्रमाण?
5: तुम्हारा चित्र उनके एकांत पर्ण कुटी में लगा हुआ, जिसे राजकुमार ने अपनी तूलिका से स्वयं चित्रित किया है।
6: ये झूठी बात है।
5: मैंने स्वयं देखा है तुम्हारे सौंदर्य सौष्ठव का वह महान चित्र, राजकुमार की महान कृति अपनी आंखों से देखा।
6: तो क्या राजकुमारी से भावी सम्राट का एकांत मिलन संभव हो सका?
5: नहीं, मैं उनकी शून्य पर्णशाला में उस समय पहुंची जब राजकुमार कहीं पर्यटन में निकल गए थे।
6: विश्वास नहीं हो रहा। क्या सचमुच राजकुमार के एकांतवास स्थल में मेरा चित्र है?
5: हाँ हाँ सखे, बिल्कुल सच है। मेरी नेत्र तुम्हारे चित्र को प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए। किंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस सूचना में ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना उद्विग्न कर दिया।
6: बात तो सचमुच कुछ भी नहीं है राजकुमारी जी, और ना ही किसी प्रकार की उद्विग्नता ही है। हाँ, कौतूहल इस बात का अवश्य है कि इतने महान व्यक्ति को मुझ तुच्छ नारी का चित्र रखने की

0: ऐसी लालसा उत्पन्न हुई।
1: तुम सदा अपने को तुच्छ क्यों समझती हो भुवन मोहिनी? क्या तुम वास्तव में इतनी भोली हो कि अपने सौंदर्य से स्वयं अपरिचित हो? कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं होता। जब स्त्री जाति तुम्हारे अनन्य स्वरूप का दर्शन करके अपने को धन्य मान लेती है, तब विजय श्रवा तुम्हारे स्वरूप पर क्यों न पसीजे? माना कि वे भावी सम्राट हैं, सत्ता, अधिकार, वैभव और राजलक्ष्मी उनके चेरी हैं, किंतु अपने पुरुष हृदय को वो कहाँ फेंकते? हाय भुवन मोहिनी, जब स्त्री जाति तुम पर अनुरक्त है, तब तुम्हें निश्चय पूर्वक मान लेना चाहिए कि कोई भी पुरुष तुम्हारे रति से सुंदर स्वरूप पर सहज ही मोहित हो जाएगा। अरे भुवन मोहिनी, ये भी संभव है कि अब तक जितनी नारियां राजकुमार की दृष्टि से गुजरी हो, उनमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तुम ही रही हो। हो सकता है इसी कारण से राजकुमार ने तुम्हारा चित्र अंकित कर डाला हो। इतनी व्यग्र क्यों हो?
0: जो कुछ भी हो, किंतु एक महान व्यक्ति के पास एक नर्तकी का चित्र कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।
1: ओ रूप की जादूकरनी, तुझे ज्ञात नहीं है कि तेरे मधुर स्पर्श में अमूल्य आसव किसी उत्तेजना और विस्मृति भरी पड़ी है। तेरी रूप माधुरी का सुखद स्पर्श जब मुझे विस्मय विमुक्त और विह्वल कर देता है, तब भला धारा नगरी की राजकुमार को क्यों ना करेगा? क्यों ना वो तेरी वासना में सिहर कर तेरा चित्रांकन करे, तेरी मानसिक पूजा करे।
0: बस बस राजकुमारी, बहुत ना बनाइए मुझे। इन व्यर्थ की आडंबरपूर्ण प्रशंसाओं से मैं नहीं फंसने वाली। हाँ, ये कहिए कि राजकुमार ने अब अपनी प्रेयसी को खोज निकाला है और प्रथम प्रेमोपहार में ही आपको कृतकृत्य कर दिया है। अब मैं साहस पूर्वक राजकुमार से निवेदन करूंगी कि राजकुमारी चंद्रहासिनी मणिमाल के स्थान पर स्वयं को राजकुमार के हृदय का हार बनाना चाह रही हैं।
1: नहीं सखी, ना जाने कौन हृदय से कह उठता है कि वो मुझे अपना ना सकेंगे।
0: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, ये तो निश्चित है कि राजकुमार भारत के भावी सम्राट हैं, उनके ऊपर महान दायित्व है। ऐसे में हो सकता है आपके प्रेम सिक्त हृदय की रिक्ति अधूरी रह जाए। ये भी हो सकता है कि आपको अपने पवित्र प्रेम का न जाने कितना मूल्य भी चुकाना पड़ जाए। परंतु
1: सखी, मैंने तो उन्हें प्रथम दर्शन में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इन नेत्रों पर अब कोई मेरा अधिकार नहीं रहा। भारतीय नारी तो उत्सर्गमयी है, उसका प्रेम सर्वस्व समर्पण रहा है। मैं इसी परंपरा का पालन करूंगी। पहले ही जिन्हें मैंने फूल सा कोमल समझा था, वो प्रस्तर की भांति कठोर निकले। अब और कोई चारा ही क्या है? अब चाहे जैसे भी दे, मुझे तो उनके प्रेम की अलग जगानी ही पड़ेगी। वो मुझे भाई थी, उनकी रूप माधुरी में निष्ठुरता की छाया मुझे नहीं दिखी थी और न ही मैंने देखी कोई हृदयहीनता। मुझे तो जैसे उनके नेत्रों ने एक मौन आमंत्रण दिया था, बस मैंने उसे स्वीकार किया। मैं कहाँ जानती थी कि उनकी इस देवोपम सरलता के चारों ओर महान दायित्वों की कठोर श्रृंखलाएं बंधी हुई हैं।
0: विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैंने उनके प्रेम से तुम्हें

0: मैंने उसे स्वीकार किया। मैं कहाँ जानती थी कि उनकी इस देवोपम सरलता के चारों ओर महान दायित्वों की कठोर श्रृंखलाएं बंधी हुई हैं।
1: विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैंने उनके प्रेम से तुम्हें

0: कृतज्ञता तो मैं प्रकट करती हूं, प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण। विधि विधान ने मुझे महाराज आदित्य सेन की शरण में ला पटका और उन्होंने साहसपूर्वक अभयदान प्रदान किया। अन्यथा भारत सम्राट द्वारा निर्वासित किए जाने पर मुझे निश्चय हो गया था कि मेरा समग्र जीवन विपत्तियों की गाथा बन जाएगा। मेरी सहायता करने का कोई भी साहस न करेगा। महाराज ने मुझ पर जो दया प्रकट की है, उसकी सराहना मैं किस मुख से करूं?
1: सखी, ये भी तुम्हारी महानता है जो सदैव पिताजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हो। अन्यथा राष्ट्र की कुशल और सर्वश्रेष्ठ गायिका होने के नाते तुम जहां भी जाती वहीं लुब्ध मधुब की भांति मानव सागर को उद्वेलित करती। तुम्हें प्रत्येक स्थान पर आदर और पुरस्कार प्राप्त होता। क्या तुम जानती हो कि युवराज के बुलाने पर भी मैंने तुम्हें क्यों रोक लिया?
0: नहीं।
1: तो सुनो सखी, मैं तुमसे जो कहने जा रही थी वो ये कि हम तुम दोनों एक ही पद की कामनी है। मैं भली भांति समझ गई हूं कि युवराज तुम्हें सर्वांतःकरण से प्यार करते हैं। जो कुछ अपनी ओर से वे तुम्हें प्रदान कर चुके हैं उसे वो किसी मूल्य पर लौटा ना सकेंगे, और मैं वही चाह रही हूं जो तुम्हें युवराज से प्राप्त हो चुका है, वो है प्रेम, जो एक बार में एक ही को दिया जा सकता है। मैं समझती हूं कि युवराज द्वारा वो प्रेम भी तुम्हें प्राप्त हो चुका है। यदि मुझे अपने प्रेम से युवराज पुरस्कृत भी करना चाहे तो वो एक बार समर्पित किया हुआ होगा। भुवन मोहिनी, तुम स्वयं एक नारी हो, तुम्हें ज्ञात है कि नारी हृदय रहस्य और गोपनीयता की परिधि के भीतर रहकर अपने निश्चल प्रेम की ज्योति जलाता है। वो प्रीतम की मधुमेह मोहिनी मूर्ति अपने हृदय मंदिर में आसीन कर बड़ी गोपनीयता के साथ उस प्रेम देवता की आराधना में लीन हो जाता है। वह आवरण में नारी हृदय ज्यों का त्यों कौतूहलहीन रहता है, परंतु अंदर ही अंदर प्रेमानुभूतियों के उत्तप्त आंसुओं से रोता है, सुलगता है। अवश्य अश्रुओं की धारा में नारी हृदय चलते हुए भी शांति का अनुभव करता है। उत्पीड़ित और प्रताड़ित होकर भी वो बाहर से मुस्कुराता है। सखी, तुम्हें भी ये सब ज्ञात है। अस्तु, राजपुत्री होकर भी भिखारिणी की भांति तुमसे तुम्हारे प्रियतम की भीख मांगती हूं। बोलो बोलो, मुझे निराश तो ना करोगी?
0: नहीं राजकुमारी, यदि वे तुम्हें स्नेह और आदर प्रदान कर सकें तो मैं अपने को धन्य समझूंगी और चाहूंगी कि वो तुम्हें अपने नेत्रों की पुतली बनाकर तुम्हारी दृष्टि से देखें, तुम्हारे कानों से सुने, तुम्हारे हृदय से बात करें। तुम्हारे अस्तित्व में उनके प्रेम की लय हो और वो पूरी तरह से तुममय हो जाएं। मैं अपने को भाग्यशालिनी समझूंगी। भारत साम्राज्ञी का गौरवमय पद तुम्हारे प्रतिष्ठित होने पर ही उज्जवल रहेगा, अन्यथा मुझ नर्तकी की छाया परंपरागत महानता की सीमा का अतिक्रमण कर उसे तुच्छ बना देगी।
1: ओह भुवन मोहिनी,
0: जाइए राजकुमारी। राजकुमार विजय श्रवा की गौरवमयी प्रेसी और जीवन संगनी बनिए। मैं आप दोनों के प्रेम संबंधों में कभी भी ईर्ष्या का विष सम्मिलित नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि इस अभागिनी नर्तकी ने भी कभी भावी सम्राट की प्रेमिका होने का

0: गौरव प्राप्त किया था। मैं अपना अहोभाग्य यही समझूंगी कि विजय श्रवा की जीवन संगनी खोजने के श्रेय का एक अंश मुझे भी प्राप्त हुआ था। राजकुमारी, जिस दिन सम्राट द्युमत सेन ने मुझे धारानगरी से निर्वासित किया था, उसी समय मैंने निश्चित किया था कि मैं राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी राजकन्या का परिणय विजय श्रवा से कराऊंगी और अपनी खोज में लगी हुई ही इंद्रप्रस्थ नगरी में आई थी। इसके पूर्व भी अनेक बार मुझे नरेशों से ज्ञात हुआ था कि महाराज आदित्य सेन की एकमात्र कन्या ही राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। इसीलिए मेरी रानी, अपने विजय श्रवा के लिए मैंने आपको चुना है। मुझसे भय मत खाइएगा, मैं आपकी अमृत प्रेम प्याली में अपने द्वेष की विषैली घृणा कभी नहीं भरूंगी।
1: इसी विश्वास और इसी पवित्र देन के कारण तुम मुझसे बहुत ऊंची हो। मैं आज तुम्हारे प्रदान किए हुए प्रेम और प्रीतम द्वारा अपने स्नेह का संसार बसाने का कौतूहल में स्वप्न देख रही हूं। देखो देखो, कभी मुझे भी पुरस्कृत करेगा या नहीं मेरे रूप का देवता।
0: तो चलिए,
1: कहाँ?
0: राजकुमार विजय श्रवा से मिलने।
1: लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं।
0: तो क्या हुआ, क्या अभी भी आपको मुझ पर शंका है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं उनके दर्शन की बेचैनी को कुछ पलों के लिए शांत करना चाहती हूँ।
0: ये मेरे लिए भी सुखद होगा राजकुमारी,

0: ओहो, मित्र विजय शर्मा से मिलने भुवन मोहिनी देवी अभी तक नहीं आई। अब मुझे तो भय लग रहा है कि उन्हें बुलाने के लिए युवराज मुझे कहीं फिर से ना भेज दें। अरे ये क्या, लगता है कि भुवन मोहिनी आ गई परंतु राजसी रथ में। आए, प्रतीत हो रहा है कि भुवन मोहिनी के संग राजकुमारी भी पधार गई। अब क्या होगा? आइए आइए, राजकुमारी जी को अरण्यक का अंजुलिबद्ध सादर प्रणाम।
1: शुभ हो अरण्यक, जाओ देव से निवेदन करो कि भुवन मोहिनी के साथ राजकन्या चंद्रहासिनी भी दर्शन के लिए उपस्थित हैं।
0: अवश्य देवी। अरे मित्र मित्र मित्र, अचंभा हो गया।
2: क्या हुआ अरण्यक?
0: भुवन मोहिनी आ गई हैं।
2: इसमें अचंभा क्या, उन्हें तो हमने ही बुलवाया था।
0: उनके साथ राजकुमारी जी भी हैं।
2: क्या?
0: हाँ,
2: चलो उनकी अगवानी के लिए चलता हूं।
0: यही उचित भी होगा। आइए ये देखिए।
3: शुभ स्वागत है राजकुमारी और भुवन मोहिनी का। देवी, कुटिया के अंदर पधारिए। मैं अतिथि सेवा द्वारा अपने को सौभाग्यशाली और कृतार्थ समझूंगा। ओह भुवन मोहिनी, हम लोग दीर्घ वियोग के पश्चात आज मिले हैं। तुम्हारे साथ राजपुत्री चंद्रहासिनी भी हैं। बोलो, इस शुभागमन के अवसर पर मुझे किस प्रकार अतिथि पूजा और सत्कार करनी चाहिए?
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
3: एवमस्तु।
1: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल अचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उज्जैन में अगले वर्ष आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल और धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। प्रदेश में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। और FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम ने कल FIH प्रो लीग के रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

तैरते हैं खुली उड़ान में, आज की नारी कम नहीं किसी आसमान में। समेटे है खुद में वो हर रंग कायनात का, वजूद उसका गूंज रहा पूरे जहान में। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं आज के महिला सभा कार्यक्रम का।

सखियों, कहा गया है ना, जहां नारी का सम्मान होता है वहां खुशियां खुद ब खुद चली आती हैं, और हम सभी के खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे इस बात का गवाह हैं कि जब हम सब एक साथ मिलती हैं तो सकारात्मकता की एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। आज की इस महिला सभा में हम खुलकर बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी के सफर को और हसीन बनाने के लिए संकल्प लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम है हमारा और आपका। सखियों, ये बात एकदम सही है कि किसी भी देश का विकास उसकी इमारतों से नहीं बल्कि वहाँ के नागरिकों की सेवा में लगे कर्मचारियों से होता है। इसी सेवा भाव को दर्शाता है हमारा आज का विशेष दिन। जी हाँ सखियों, आज हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। आज का ये दिन सखियों उन अनगिनत लोक सेवकों को समर्पित है जो बिना थके पर्दे के पीछे रहकर समाज के हर व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने का काम करते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य केवल एकमात्र यही है सखियों, समाज के लोक सेवकों को पहचानना और युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। सखियों, संयुक्त लोक सेवा दिवस पर हम सब मिलकर अपने लोक सेवकों के निस्वार्थ योगदान को सलाम करें, उनका सम्मान करें और एक बेहतर समाज के निर्माण में उनका सहयोग करें, क्योंकि उनकी सेवा में ही छुपा है हमारा सुरक्षित कल। सखियों, किसी ने सच ही कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अकेले चलना है। आज 23 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस सिर्फ कैलेंडर में एक तारीख नहीं, यह एक दिन है उन करोड़ों महिलाओं के संघर्ष को पहचानने का जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया। जब एक घर का मुखिया चला जाता है ना, तो पीछे छूट जाती है एक महिला। समाज अक्सर उसे सहानुभूति तो देता है लेकिन अधिकार नहीं। ताने, आर्थिक तंगी और अकेलेपन के साए में वह अपने और अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए जूझती रहती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, कहानी है हौसलों की भी। हमारे समाज में कई ऐसी प्रेरणादायक महिलाएं हैं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा, पति के जाने के बाद न केवल खुद को संभाला बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का यही असल मकसद है सखियों, कि इन महिलाओं को दया की नजरों से नहीं देखना है बल्कि उन्हें सम्मान और समानता देनी है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकार मिलने चाहिए। आज के इस विशेष दिन पर आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, अपने आसपास, हमारे परिवार में या पड़ोस में अगर कोई ऐसी बहन या माँ है तो उनका संबल बने, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेली नहीं हैं। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है पूरा परिवार, समाज मजबूत होता है। चलिए आज से रूढ़िवादिता को पीछे छोड़ते हैं और सम्मान की एक नई शुरुआत करते हैं।

सखियो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र सेवा के शानदार 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्वर्णिम यात्रा में सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ देश ने अभूतपूर्व प्रगति, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, कई योजनाएं ऐसी ऐतिहासिक पहल की है कि जिससे करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदल गया है। मोदी जी के मजबूत इरादों ने हर क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। आज का आत्मनिर्भर भारत उनके अद्वितीय समर्पण और निर्णायक नेतृत्व की जीती जागती मिसाल है सखियो। और अब बात प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही एक योजना की। आज सखियो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना सखियो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 2029 तक देश के सभी गरीबों और बेघरों को पक्का घर प्रदान करना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,30,000 तक की सहायता और शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.75 लाख की ब्याज सब्सिडी शामिल है। सखियो, इसके लिए जो भी आवेदक हैं उनका भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, साथ ही वो गरीबी रेखा के नीचे हों। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं ना सखियो, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बहनों न केवल छत प्रदान कर रही है बल्कि हमारा जीवन स्तर भी सुधार रही है। सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाकर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। सचमुच सखियो, ये योजना सभी के लिए आवास के सपने को साकार करने का एक मील का पत्थर है। तो सखियो, अगर आपका सपना भी है अपना घर बनाने का, तो जरूर जुड़िए प्रधानमंत्री आवास योजना से और इस योजना का लाभ लेकर इसे सफल बनाइए। सखियो, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्रम मेरी उड़ान के साथ। आज क्रम मेरी उड़ान में है हमारे साथ गेम्स टीचर, खेल शिक्षिका अन्नू झारिया। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी, क्रम मेरी उड़ान में।

0: सखियों, आज के क्रम मेरी उड़ान में मेरे साथ हैं खेल प्रशिक्षिका या कहूँ गेम्स टीचर अनु झारिया। ये एक प्रतिष्ठित संस्थान में बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण देती हैं। बतौर गेम्स टीचर सफल और आत्मनिर्भर हैं। आइए मिलते हैं अनु झारिया से और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मेरी उड़ान में। सबसे पहले अनु जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका रुझान इस फील्ड में कैसे आया।
1: धन्यवाद शालिनी जी, मुझे आपने मेरे बारे में बताने का मौका दिया। जैसे कि बच्चे बूढ़े सभी को ही खेलों में इंटरेस्ट होता है, उसी प्रकार मुझे भी खेलों में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने गेम्स में जाने का फैसला किया। और मैं 8 साल की एज से जिमनास्टिक खेलने लगी थी। मेरे सर है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मैं एक स्पोर्ट टीचर भी बनी हूँ और एक अच्छा प्लेयर बनी हूँ।
0: अनु जी, आप हमारी सखियों को ये बताइए कि आप किस प्रकार के खेल में आप माहिर हैं और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है।
1: मेरा फेवरेट गेम जिमनास्टिक है, जिसमें मैंने बहुत नेशनल भी खेला है, स्टेट लेवल

0: चैंपियन रह चुकी हूँ। मैं 8 साल की एज से इस गेम को खेल रही हूँ। मैंने इसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल, ओपन्स नेशनल, वुमेन्स नेशनल, सभी नेशनल खेल चुकी हूँ मैं, और ये सब मैंने जिम्नास्टिक में ही अचीव किया है। और जिम्नास्टिक एक ऐसा गेम है जिसमें 4 अपरेटस होते हैं, 4 अपरेटस गर्ल्स के लिए होते हैं, 6 अपरेटस बॉयज के लिए होते हैं। जिम्नास्टिक वैसे तो एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वाला गेम है, जिसे मतलब कम एज से आप स्टार्ट करते हो तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है। बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा तभी आप जिम्नास्टिक कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपके अंदर बहुत पावर, स्टेमिना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिम्नास्टिक गेम बहुत रिस्की भी होता है। इसमें स्टंट करने के साथ साथ चोट लगने का भी डर रहता है। आपका माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सब जब आप कुछ भी स्टंट करते हैं या फिर कुछ जंप करते हैं तो उसमें आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे मूव करना है।
1: बहुत सही बात कही अनु जी। देखिए, जब हम अपने शरीर में तालमेल बैठाना सीख जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो काम बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात बोल रही हैं आप। और भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारी कोई सखी आपकी तरह गेम्स टीचर या ट्रेनर बनना चाहती है तो उसे क्या करना होगा?
0: सबसे पहले तो शालिनी जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस फील्ड में बहुत मेहनत है और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब तक खुद से इंटरेस्टेड नहीं होगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही।
0: इसीलिए मतलब जैसे इसको आपने जैसे पहले कभी कोई गेम में आपका इंटरेस्ट हो या फिर आपने कुछ गेम खेल रखे हो या जिस गेम के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, जानकारियां हो, तो उस गेम में आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे बीपीएड होता है, बीपीएड कोर्स है जिसको करने से आपको है ना तो स्पोर्ट्स के हर गेम के बारे में नॉलेज मिलती है। मेन गेम जैसे आपका कुछ भी हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, जिम्नास्टिक क्यों ना हुआ।
1: बहुत बढ़िया अनु जी, आपने हमारी सखियों को इतने सारे कोर्सेज के बारे में बताया जिनकी वजह से वो आगे चलकर एक अच्छी ट्रेनर या गेम्स टीचर बन सकती हैं। अब मैं आगे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गेम्स की फील्ड में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं शालिनी जी, छोटे से लेवल से भी आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। और हम सब मिलकर एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, थोड़े बहुत बच्चों से स्टार्टिंग होती है, भले से 4 बच्चे आ रहे, 2 बच्चे आ रहे, धीरे धीरे वो चीज चल के बढ़ती है।
1: बिल्कुल।
0: और धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जैसे कि हर स्कूलों में स्पोर्ट टीचर की डिमांड, सभी को मतलब खेलों में अब रुचि आने लगी है, बच्चों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा खेलों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि आपकी धीरे धीरे करके अर्निंग शुरू होने लग जाएगी और आप इसमें माहिर हो जाएंगे।
1: तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि खेल हमें स्वस्थ तो रखते ही हैं, साथ ही साथ हमारी जेब को भी हरा भरा रखते हैं, है ना? आखिर में आप हमारी सखियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: अब मैं सखियों से यह कहना चाहूंगी कि अब वो समय नहीं रहा है जब कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब। अब वह समय है, जितना महत्व पढ़ाई का है उतना महत्व खेलों का भी है। अब आप भी चुप मत रहिए, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारिए, और आप भी अगर किसी गेम में रुचि रखती है या इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़िए।
1: बहुत अच्छी बातें कही अनु जी ने हमारी सखियों से। हम भी चाहेंगे कि सखियां अपने अरमानों को, अपने सपनों को पूरा करें, चाहे तो गेम्स टीचर के रूप में। अनु जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

सखियों, अब बात रूप लावण्य की। व्यस्त जीवन शैली में अक्सर अपने पैरों की देखभाल करना हम भूल जाते हैं, जबकि वे दिन भर हमारे शरीर का भार सहते हैं और बाहरी परिस्थितियां से लड़ते रहते हैं। पैरों का प्राकृतिक स्थान उन्हें आराम देता है सखियों, थकान कम करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो आज जानेंगे रूप लावण्य में पैरों को सुकून देने वाले फुट बाथ। सखियों, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के अनुसार तलवों में अनेक तरह की नाड़ियों का जाल होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी होती हैं, और यही कारण होता है कि पैरों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका अवशोषण हो पाता है। सही देखभाल से रक्तचाप सुचारू रहता है, तनाव भी कम होता है और हाँ, शरीर को आराम मिलता है। अगर आप थकान दूर करना चाहते हैं ना सखियो, तो टब में 2 बड़े चम्मच ग्रीन टी या टी बैग ले सकते हैं और गुनगुने पानी में उन्हें 5 से 10 मिनट डालकर छोड़ दें ताकि उनके पोषक तत्व उसमें घुल जाएं। अब इसमें आप आधा कप नमक डालें और 1/4 कप बेकिंग सोडा डालें।

डालें, 5 बूंद पेपरमेंट ऑयल की डालें और पैरों को 15 से 20 मिनट तक इसमें डुबा कर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रक्त संचार सुचारू हो तो गुनगुने पानी में आधा कप समुद्री नमक, 1/4 कप बेकिंग सोडा, 5 बूंद पेपरमेंट ऑयल और थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक मिला लें और पैरों को लगभग 15 मिनट तक इसमें भिगो कर रखें। और अगर मकसद हो क्लींजिंग का कि आप पैरों को साफ करना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में 1 कप सेब वाला सिरका लें, आधा कप समुद्री नमक डालें, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और 5 बूंद किसी भी तेल की डाल सकते हैं। अब पैरों को 15 से 20 मिनट तक इसमें भिगो कर रखें। इसके नियमित इस्तेमाल से रक्त संचार तो बेहतर होगा ही सखियो, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुधरेगी, साथ ही तनाव कम होगा, अनिद्रा और मानसिक थकान को भी राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें सखियों, यदि पैरों में कोई खुला हुआ घाव या संक्रमण है तो फुटपाथ बिल्कुल ना करें और अधिक गर्म पानी का उपयोग भी ना करें। मधुमेह के जो मरीज हैं वे चिकित्सक की सलाह लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी तेल या सामग्री से एलर्जी हो तो उसे भी शामिल ना करें। सखियों, अगर आप फुटपाथ लेती हैं तो फिर देखें कि कैसे आपके पैर कोमल मुलायम खूबसूरत तो दिखेंगे ही, साथ ही साथ आपको चुस्त दुरुस्त भी रखेंगे।

और अब रुख करते हैं फूड जोन की तरफ। फूड जोन में आज हम बात करेंगे बच्चों और बड़ों की पसंदीदा चटनी, सेजवान चटनी की। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं होममेड सेजवान चटनी। सखियो, इसके लिए आपको चाहिए सूखी लाल मिर्च 15 से 20, आप चाहें तो काश्मीरी और तीखी मिर्च

मिली जुली ले सकते हैं। बारीक कटा हुआ लहसुन आधा कप, बारीक कटा हुआ अदरक एक चौथाई कप, तेल आधा कप, सोया सॉस दो बड़े चम्मच, सफेद सिरका एक चम्मच, शक्कर एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और हाँ काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चम्मच। अब सबसे पहले सखियो दोनों तरह की लाल मिर्च को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दें ताकि वे नरम हो जाएं। अब इन्हें पीस कर पेस्ट बना लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन और अदरक को गुलाबी होने तक भून लें। इसमें मिर्च पेस्ट मिलाएं और धीमी आंच पर तेल अलग होने तक चलाते हुए पकाएं। सोया सॉस, सिरका, शक्कर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 2 से 3 मिनट तक पकाएं और अंत में काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। अब इस चटनी को ठंडा करें और ठंडा करके जार में भर के फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहें तो इस चटनी को 1 महीने तक लगभग स्टोर कर सकते हैं। देखिए ना कितने आसानी से तैयार हो गई होममेड सेजवान चटनी। अब चटपटी चटनी के बाद हो जाए सगियो एक प्यारा सा मीठा मीठा गीत।

सखियो अब होंगी कुछ काम की बातें। आज हम बात करेंगे सखियो कि अक्सर हमारा जो थका हुआ शरीर है वो बताता है कि शरीर में आयरन की कमी हो रही है। जी हाँ, आयरन की कमी। जब ध्यान भटकता हो, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो, तो ये आयरन की कमी के संकेत हो सकते हैं। ये समस्या सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन शरीर पर इसका गहरा असर होता है सखियो। आयरन शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज है, जो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है सखियो, और ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। पर्याप्त आयरन होने पर शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है, दिमागी कार्य क्षमता बेहतर होती है, और हाँ, प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। वहीं अगर इसकी कमी हो जाती है ना सखियो, तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार कुछ सामान्य से कारण जैसे संतुलित आहार का अभाव, आयरन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी, या इसके अलावा महिलाओं में अत्यधिक मासिक स्त्राव, गर्भावस्था के दौरान बढ़ी हुई जरूरत, बार बार खून की कमी या पेट की समस्या के कारण भी आयरन का सही अवशोषण नहीं हो पाता। और सखियों, कुछ लोगों को ये समस्या अनुवांशिक या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के कारण भी हो सकती है। सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, धड़कनें तेज होती हैं। इसके अलावा जो मानसिक एकाग्रता है वो भी कम होने लगती है, सिर दर्द होता है, त्वचा पीली पड़ने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, और भी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आयरन की कमी से हम सभी जानते हैं कि एनीमिया भी हो सकता है सखियों। ऐसा ना हो सकियो, इसलिए हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान में अगर आप मांसाहारी हैं, तो रेड मीट, कलेजी, मछली व अंडे अच्छे स्रोत होते हैं आयरन के। और अगर आप शाकाहारी हैं, तो चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन,

तिल, दाल, हरी सब्जी, कद्दू के बीज, गुड़, खजूर व किशमिश ले सकते हैं। और हाँ, रोज़ सुबह नाश्ते में गुड़ या सूखे मेवे ज़रूर शामिल करें। सलाद में नींबू डालकर खाएं और प्रोस्टेट फूड से दूरी बनाकर रखें। आयरन का सही अवशोषण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है विटामिन सी। तो सखियों, काम की ये बातें जरूर याद रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल चलने का समय हो रहा है, तो बता दें आपको कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दें अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

श्रोता बहनें अभी सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
3: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
4: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
3: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
4: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
3: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
4: चौराहे पर हमेशा जेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
3: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
5: ए भाई जरा देख।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार है कालू सिंह चोपड़ा और साथी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला लोकगीत।
1: हे जी गगन मंडल से उतरे और सतगुरु

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपने कालू सिंह चोपड़ा और साथियों के गाए लोकगीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं श्रुति कलवे।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने श्रुति कलवे के गाए कुछ भक्ति गीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए गुलजार के लिखे गीत से। संगीत खयाम का है और फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

और अब पेश है कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल है। शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्रप्रथम की भावना ही केंद्र में है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास राष्ट्रप्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से

0: इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत को बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए करने की भी मंजूरी दी गई, जो पहले 6,941 करोड़ रुपए थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का सपना एक देश एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में जरूरी तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों की रक्षा पर चर्चा हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 20 जुलाई की रात तक लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया में चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि 25 जून को भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया और पंजीयन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा कलेक्टर ने जिला पोषण समिति की बैठक में गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीयन करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों में अवैध गैसकेट और अनफिट वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और शिवपुरी में मोहर्रम पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सद्भावना समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19

0: महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है, तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड इस

0: करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से

0: प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
1: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का आरंभ कर रहे हैं फिल्म राजनीति के गीत से। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और आवाज आदेश श्रीवास्तव, रोसेली और शशि।

फिल्म राजनीति का ये गीत सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी अनिल कवचाले, सुषमा, आरती, सबीहा, रूपाली, श्वेता, पूजा, सीमा और उनके सभी साथियों ने गुमाश्ता नगर इंदौर से। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही फरमाइश थी। लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली, अनरत, हल्ले, लल्लू, ऋषि और रैकवार परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी फरमाइश बंडा बेलई सागर से भेजी थी। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत जिसे सुनवाने की फरमाइश की है गोला बाजार बक्सर से जीत प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुष और आयुषी ने। गोला बाजार

सर बक्सर से ही श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने। पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू। तो पेश है आप सबकी पसंद पर राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार के स्वर में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है और फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

शफकत अमान अतली की आवाज में आप सुन रहे थे निरंजन आयंगर का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से संवारा था शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म थी माय नेम इज खान। फरमाइश करने वाले श्रोता थे अंबेडकर चौक खुरई से परमानंद।

आर्य, सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनके सभी साथी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू और तासू, मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कोला रोड भोपाल से अपनी फरमाइश हमें भेजी। तो आप सबकी पसंद के इस गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और सुनते हैं शंकर महादेवन और अलीशा मेंडोसा की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत एक बार फिर शंकर एहसान लॉय का है, फिल्म है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधुर, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। जिला खंडवा ग्राम छैंगा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा ने इस गीत की फरमाइश की है। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। बिलहरी बड़खेरा से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खां, सुमित, सुनील और उनके सभी साथी। तो पेश है आप सबकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत अब आप सुनेंगे राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज में। विशाल ददलानी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने। फिल्म है अनजाना अनजानी और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है भाटापारा दत्रेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा ने। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप से ने मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की फरमाइश हमारे पास आई है। राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतना, रोशनी, बेबी प्रियांशी ने शाहू नगर यवतमाल से फरमाइश भेजी है। बलिया नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश है। गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल और गाजीपुर के शेरपुर कला से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय भी यही गीत सुनना चाहते हैं। इसी गीत को सुनना चाहा है राजेश सावले पाटिल, राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने छत्रपति संभाजी नगर से। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनजाना अनजानी का गीत। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। आज के इन मुख्य कार्यक्रमों में शाम 5 बजे से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी शाम 6 बजे आप सुनेंगे। 7:21 का समय ग्राम सभा कार्यक्रम का रहेगा। इसके अंतर्गत सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका विषय पर आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता। बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल होगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। उर्दू कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर। अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुना जा सकेगा रात 10 बजे और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन सुना जा सकेगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज। साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे।

ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं श्रुति कालवे।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से डीटीएच के ऑडियो चैनल पर किया जा रहा है। पेश है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म है टू स्टेट्स।

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने अभी सुना इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत यार रहमान का था और फिल्म थी तमाशा। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज़ सोनू निगम और कीर्ति सगाथिया की है। दावत-ए-इश्क फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत साजिद वाजिद का।

दम लगा के हईशा, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। वरुण ग्रोवर

मोनाली ठाकुर के गाए इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि 25 जून को भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया और पंजीयन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 20 जुलाई की रात तक किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। वहीं विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया जिलों में हीटवेव यानी लू का अलर्ट भी जारी किया है, जबकि प्रदेश के कई अन्य जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाष जाटव का काव्य पाठ, साथ ही होगी वार्ता भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप। तो सुनते हैं ये वार्ता। वार्ताकार है ऋषिकांत सक्सेना।
2: नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारतीय पत्रकारिता के बदलते स्वरूप की। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज भारतीय पत्रकारिता का स्वरूप प्रिंट और टेलीविजन से आगे बढ़कर डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में प्रवेश कर चुका है। आज ब्रेकिंग न्यूज और त्वरित प्रतिक्रिया ने पारंपरिक संपादकीय मूल्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। इससे एक तरफ सूचना का लोकतंत्रीकरण हुआ और दूसरी तरफ इसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता और बढ़ गई है। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, मूल्यों और समाज सुधार की मजबूत नींव पर खड़ा है। आजादी के बाद जिस तरह से हमारे देश ने विकास की यात्रा को तय करना शुरू किया, विकास के मापदंडों को छुआ, उससे यह तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। पत्रकारिता का विकास भी ऐसे ही होता जाता है। आज की पत्रकारिता केवल गली मोहल्लों तक सीमित नहीं रही है। आज एक गांव की चौपाल से लेके बड़े बड़े शहरों की एक्टिविटीज़ को मिलाती है और एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। आज पत्रकारिता के जरिए ही हम लोग जान पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। पत्रकारिता के कई रंग रूप समय के हिसाब से बदलते जाते हैं। आज की पत्रकारिता तकनीकी पत्रकार से कंधा मिला के चल रही है। आज खबरें आपका इंतजार नहीं करती। अगर हम लेट होते हैं तो वो किसी और एंगल से फ्लो हो जाती हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य आम जनता की आवाज़ उसके लिए पहुँचे ये साधन होना चाहिए। आम आदमी का क्या हक है, उसकी क्या दिक्कतें हैं और उसको किस तरह से दूर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक सेतु है सरकार और जनता के बीच का। ये सेतु दोनों को आपस में मिलाता है, उसके साथ ही लोगों की मानसिकता बदलती है, हालात सामने आते हैं और विकास का तरीका तेजी से आगे होता है। पिछले

दशकों में, विशेषकर इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के इस दौर में, पत्रकारिता का परिदृश्य काफ़ी कुछ बदल गया है। हकीकत तो यह है कि आज प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न की सीमाएं टूट रही हैं और सूचनाएं सीधे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रही हैं। यह बदलाव जितनी तेज़ी से हुआ है, उसने पत्रकारिता के स्वरूप और उसके नैतिक मूल्यों को और भी गहराई तक जाने पर मजबूर कर दिया।

के सुदूर कोनों से आ रही आवाज़ों को भी आसानी से सुन और समझ पाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स समाचारों के प्राथमिक स्रोत बन गए हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्निक ने भ्रामक सूचना और फेक न्यूज़ के जाल को अलग अलग कर दिया है। सोशल मीडिया भी इस तरह से काम करता है कि वे दर्शकों को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन इससे समाज के कई एंगल सामने आ रहे हैं। ऐसे दौर में एक निष्पक्ष और जिम्मेवार पत्रकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़ी बात है कि पत्रकारिता के बुनियादी मूल आज भी नहीं बदले हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य की खोज और जनहित आज भी वही है। माध्यम चाहे अखबार हो, टीवी चैनल हो या डिजिटल पोर्टल या फिर कोई और दूसरा साधन, हर जगह विश्वसनीयता ही किसी भी तरह की पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी है। डिजिटल युग में तो हालत यह है कि पत्रकारों और संपादकों का दायित्व बढ़ गया है। यह कह सकते हैं कि इस समय भारतीय पत्रकारिता एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब इसकी पहुंच और विस्तार बहुत तेजी से बढ़ गया है, लेकिन इसके नैतिक पतन को रोकना भी समाज और लोकतंत्र के हित में अत्यंत आवश्यक है। निष्पक्ष पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होती है। तकनीक के इस नए दौर में यदि पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता, साहस और सामाजिक सरोकार को बनाए रखती है तो उसका भविष्य उज्जवल है और लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। लेकिन अब हमको यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया ने भावी पत्रकारों को पेशेवर तरीके से जिस तरह से फील्ड में पेश करने का काम शुरू किया है उससे काफ़ी बदलाव आ रहा है। इस दिशा में पूरी दुनिया में काम हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों ने अपने अपने छात्रों को डिजिटल राजनीतिकार के रूप में भी अपने कैरियर को तैयार करने के लिए कई तरह के सोशल मीडिया पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि नई तकनीक के आगमन से पत्रकारों के कौशल के एक आयाम और बढ़ गए हैं और जो लोग इस कौशल को पूरा कर सकते हैं उनको पत्रकारिता में आगे आने का मौका पहले ही मिलेगा। इन चीज़ों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर और ऑनलाइन कौशल, मल्टीमीडिया, न्यूज़, सूचना और कई ऐसी चीज़ें जिनसे खबरें निकल के आम जनता तक पहुँचती हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया सबसे पहले पहुँचता है और उसमें आने वाली पत्रकारिता की खबरें जनता से सीधी जुड़ती हैं, जिससे पारंपरिक मीडिया, विज्ञापन और जनता के साथ संबंधों के बीच में एक जुड़ाव स्थापित हो जाता है। अब समाचार बुलेटिनों में पत्रकारों की तस्वीर और वीडियो समाचार के साथ दर्शकों तक पहुँचाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले समाचारों की एक सीमा होती है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन पत्रकारिता ने समाचार पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो और समाचार अभिलेखागारों को एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है, इससे पत्रकारिता के एक बिल्कुल नए आयाम का उदय हो गया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पाठक अब सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल वर्तमान समाचारों तक पहुंच सकते हैं बल्कि वो ऑनलाइन तरीके से उससे जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया भी उसमें दे सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस समय सोशल मीडिया के कारण पत्रकारिता क्षेत्र की व्यावसायिकता का विस्तार हो रहा है। इसमें पेशेवर और सामाजिक लोगों को भी शामिल किया गया है। पत्रकारिता को दैनिक जीवन के व्यापक क्षेत्रों में फैलाने के लिए एक्सपर्ट्स की कमी तलाशी जा रही है और उनको दूर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पर्यावरण पत्रकारिता, पत्रकारिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सोशल मीडिया ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चाओं में ला दिया है। पत्रकारिता पेशे से सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक समाचार का प्रारूप मुद्रित समाचार की तुलना में अधिक प्रमुखता पा रहा है। इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि आज सिर्फ खबरें ही लोगों को नहीं आकर्षित करती हैं बल्कि उनको प्रस्तुत करने का तरीका भी उनको लुभाता है। इस समय अधिकांश मीडिया संस्थानों में जिस तरह की मीडिया साइट हैं उनके माध्यम से अपने अपने दर्शकों को खबरें अधिक से अधिक पहुँचे, इसके लिए हर तरीके से काम किया जा रहा है। आज पाठकों में भी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और डिजिटल मीडिया अपना एक अलग स्थान तेजी से बनाता जा रहा है। सोशल मीडिया के युग में पत्रकारिता आम पत्रकारिता नहीं रही है। इसमें आने वाले नए युवा ऐसे अधिक हैं जो पत्रकारिता को अपने अंदाज में पेश करना चाहते हैं। वो सिर्फ न खबरों के लिए ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं बल्कि वहां का लाइव टेलीकास्ट करके लोगों को भी उससे जोड़ते हैं। ये बात सही है कि खबरों में एक

0: दूसरे से आगे निकलने की प्रतिद्वंदिता शुरू से ही रही है और आज भी चल रही है। अब तो यह हालत है कि कई मीडिया संगठन 2400 घंटे संपादकीय सेवाएं न्यूज़ रूम में उपलब्ध कराकर अपनी प्रक्रियाओं से तत्काल निकलकर लोगों को अपडेट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अब ग्रामीण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें दर्शकों को तेजी से पहुँचाई जा रही हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के महत्व को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं वह भी पत्रकारिता का एक बदला हुआ रूप है। इसमें किसी कहानी या समाचार या किसी अन्य घटना पर अपनी व्याख्या करने के अलावा उस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे लोग खबरों से सीधे जुड़ते हैं और अपना नज़रिया पेश करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें पाठकों और दर्शकों की भागीदारी ऐसी सीधी होती है ताकि उसमें कई बार पत्रकार अपनी गलतियां सुधार भी लेते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर टिप्पणियों या संपादन के माध्यम से तुरंत बदलाव भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से पाठकों और पत्रकारों के बीच एक सच्चा रिश्ता भी बनता जा रहा है क्योंकि दोनों ही टिप्पणियों व्याख्याओं के रूप में एक दूसरे से खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। जो पत्रकार आमतौर पर अपने पाठकों से सीधे बात नहीं करते उनको सोशल मीडिया के जरिए ऐसा करने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर ब्लॉग पत्रकारिता में एक ऐसी चीज़ है जिसमें पत्रकार और उनको जानने वाले श्रोता या दर्शक वह भी उनकी बातों को सुन समझ लेते हैं और अपने रिएक्शन पेश करते हैं। अंत में अपन यही कह सकते हैं कि पत्रकारिता आज की समय से तेज चलने वाली दिशा में जा रही है। सूचना के क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उससे पत्रकारिता अब केवल कमरे में बंद होकर खबरों को संकलित करने की नहीं रह गई है। इसमें समाचार निर्माण, समाचार साझाकरण और सामाजिकरण के संदर्भ को भी पेश किया जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि आज पत्रकारिता केवल खबरों से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जा रही है, यह लोगों को जिस तरह से जोड़ रही है उसका बदलता स्वरूप टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नया नज़रिया पेश कर रहा है जिसका लाभ मानव जाति को आने वाले समय में और मिलेगा और लोग विकास के साथ मापदंडों को देखते हुए अपने आप को इससे जोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।
1: भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, इस विषय पर अभी आपने ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता सुनी और अब शब्द सागर के अगले क्रम में सुनते हैं काव्य पाठ सुभाष जाटव से।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष जाटव आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।

धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने ये जाना कि धारा नगरी का राजकुमार विजय श्रवा नर्तकी भुवन मोहिनी से प्यार करने लगा था, जिससे विजय श्रवा के पिता राजा द्युम्न सेन नाराज हो गए और भुवन मोहिनी को राज्य से निकाल दिया। निर्वासित नर्तकी भुवन मोहिनी पहुंच गई इंद्रप्रस्थ और वहां के नरेश आदित्य सेन से पा लिया आश्रय। परंतु कुछ ही महीनों बाद राजमाता के तानों से नाराज होकर श्रेष्ठी का वेश धारण कर राजकुमार भी इंद्रप्रस्थ आ पहुंचा। उधर

0: इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित ही थे, जब उनको पता चला कि एक सुदर्शन व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठ बताता है आश्रम में ठहरा हुआ है, तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं वो धारा नगरी का राजकुमार तो नहीं। असलियत का पता लगाने के लिए आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रम भेजा। भुवन मोहिनी राजकुमार को वहां देखकर प्रसन्न तो हुई, परंतु असमंजस में पड़ गई कि राजकुमार किससे मिलने आए हैं, उससे या राजकुमारी चंद्रहासिनी से। भुवन मोहिनी ने जब राजा आदित्य सेन को विजय श्रवा के बारे में बताया, तो वे राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाने के लिए बुलाने आए और उसके सम्मान में एक समारोह रखा। सम्मान समारोह से लौटते समय राजकुमार और राजकुमारी चंद्रहासिनी की मुलाकात हुई। अब आगे सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।
1: आरण्यक महोदय, अब हमें लौटना होगा।
2: क्यों?
1: देखो, राजकुमार जी और हमारी सखी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रथों की ओर जा रहे हैं।
2: हाँ, परंतु मणिहार का क्या होगा?
3: उसने अपना मूल्य तो चुका दिया।
2: है?
3: ना भी मिले तो क्या है।
2: अच्छा, ऐसा है, तो फिर चलो। अरे भाई सारथी मित्रों, अपने अपने रथों को आगे बढ़ाओ।
3: मुझे पुरस्कार चाहिए, मुझे पुरस्कार चाहिए। मैंने राजकुमारी का हृदय हार खोज लिया।
2: है? कहां था?
3: यहां गिरा था।
4: राजकुमारी जी को बधाई।
0: किसके लिए?
4: मणिहार के लिए।
0: इतनी तुच्छ वस्तु के लिए क्या बधाई? मुझे तो आज संसार की संपूर्ण निधि प्राप्त हो गई। लग रहा है मानो मैं वायु में उड़ रही हूं।
4: विदा, अब अपने रथ पर सवार होइए।
2: चलो भाई, रथों को आगे बढ़ाओ। बस यहीं से हमारे रथों के मार्ग अलग अलग हो जाएंगे।
3: आरण्यक महोदय, अपने मित्र से कहिएगा कि शीघ्र ही पुनः दर्शन दें।
2: अवश्य अवश्य।
0: राजकुमारी जी, क्या मैं आपके कक्ष के भीतर आ सकती हूँ?
5: अरे आओ आओ भुवन मोहिनी, मैं तो कब से तुमसे मिलना चाह रही थी।
0: तो फिर बुलवाया क्यों नहीं? आपकी दासी हूँ। अरे ये मणिमाल आपके गले में
5: क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है?
0: बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने भेंट किया आपको?
5: हाँ, भारत के भाभी सम्राट ने, मेरी विजय श्रवा ने।
0: ओह
5: भुवन मोहिनी, अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुखड़ा अचानक मलिन क्यों हो गया?
0: नहीं तो?
5: तो फिर मुझे भ्रम है।
0: हो सकता है।
5: क्या तुमसे भाभी सम्राट का अतीत में कोई एकांत मिलन हुआ था?
0: मुझसे? मुझसे क्यों? कहां भावी सम्राट और कहां भ्रष्ट दलित एक क्षुद्र नर्तकी।
5: अरे भाई, राजकुमार तुम्हारे अनन्य उपासक हैं, इसलिए पूछ रही हूँ।
0: कौन कहता है?
5: मैं कहती हूँ।
0: अच्छा, इसका प्रमाण?
5: तुम्हारा चित्र उनके एकांत पर्ण कुटी में लगा हुआ, जिसे राजकुमार ने अपनी तूलिका से स्वयं चित्रित किया है।
0: ये झूठी बात है।
5: मैंने स्वयं देखा है तुम्हारे सौंदर्य सौष्ठव का वह महान चित्र, राजकुमार की महान कृति अपनी आंखों से देखा।
0: तो क्या राजकुमारी से भावी सम्राट का एकांत मिलन संभव हो सका?
5: नहीं, मैं उनके शून्य पर्णशाला में उस समय पहुंची जब राजकुमार कहीं पर्यटन में निकल गए थे।
0: विश्वास नहीं हो रहा, क्या सचमुच राजकुमार के एकांतवास स्थल में मेरा चित्र है?
5: हाँ हाँ सखे, बिल्कुल सच है। मेरी नेत्र तुम्हारे चित्र को प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए। किंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस सूचना में ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना

0: निघ्न कर दिया।
1: बात तो सचमुच कुछ भी नहीं है राजकुमारी जी, और ना ही किसी प्रकार की उद्विग्नता ही है। हाँ, कौतूहल इस बात का अवश्य है कि इतने महान व्यक्ति को मुझ तुच्छ नारी का चित्र रखने की कैसी लालसा उत्पन्न हुई।
0: तुम सदा अपने को तुच्छ क्यों समझती हो भुवन मोहिनी? क्या तुम वास्तव में इतनी भोली हो कि अपने सौंदर्य से स्वयं अपरिचित हो? कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं होता। जब स्त्री जाति तुम्हारे अनन्य स्वरूप का दर्शन करके अपने को धन्य मान लेती है, तब विजयश्रवा तुम्हारे स्वरूप पर क्यों न पसीजे? माना कि वे भावी सम्राट हैं, सत्ता, अधिकार, वैभव और राजलक्ष्मी उनके चेरी हैं, किंतु अपने पुरुष हृदय को वो कहाँ फेंकते? हाय भुवन मोहिनी, जब स्त्री जाति तुम पर अनुरक्त है, तब तुम्हें निश्चय पूर्वक मान लेना चाहिए कि कोई भी पुरुष तुम्हारे रति से सुंदर स्वरूप पर सहज ही मोहित हो जाएगा। अरे भुवन मोहिनी, ये भी संभव है कि अब तक जितनी नारियां राजकुमार की दृष्टि से गुजरी हो, उनमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तुम ही रही हो। हो सकता है इसी कारण से राजकुमार ने तुम्हारा चित्र अंकित कर डाला हो। इतनी व्यग्र क्यों हो?
1: जो कुछ भी हो, किंतु एक महान व्यक्ति के पास एक नर्तकी का चित्र कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।
0: ओ रूप की जादूगरनी, तुझे ज्ञात नहीं है कि तेरी मधुर स्पर्श में अमूल्य आसव किसी उत्तेजना और विस्मृति भरी पड़ी है। तेरी रूप माधुरी का सुखद स्पर्श जब मुझे विस्मय विमुक्त और विह्वल कर देता है, तब भला धारा नगरी की राजकुमार को क्यों ना करेगा? क्यों ना वो तेरी वासना में सिहर कर तेरा चित्रांकन करें, तेरी मानसिक पूजा करें।
1: बस बस राजकुमारी, बहुत ना बनाइए मुझे। इन व्यर्थ की आडंबरपूर्ण प्रशंसाओं से मैं नहीं फंसने वाली। हाँ, ये कहिए कि राजकुमार ने अब अपनी प्रेयसी को खोज निकाला है और प्रथम प्रेमोपहार में ही आपको कृतकृत्य कर दिया है। अब मैं साहस पूर्वक राजकुमार से निवेदन करूंगी कि राजकुमारी चंद्रहासिनी मणिमाल के स्थान पर स्वयं को राजकुमार के हृदय का हार बनाना चाह रही हैं।
0: नहीं सखी, ना जाने कौन हृदय से कह उठता है कि वो मुझे अपना न सकेंगे।
1: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, ये तो निश्चित है कि राजकुमार भारत के भावी सम्राट हैं, उनके ऊपर महान दायित्व हैं। ऐसे में हो सकता है आपके प्रेम सिक्त हृदय की रिक्ति अधूरी रह जाए। ये भी हो सकता है कि आपको अपने पवित्र प्रेम का न जाने कितना मूल्य भी चुकाना पड़ जाए। परंतु
0: सखी, मैंने तो उन्हें प्रथम दर्शन में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इन नेत्रों पर अब कोई मेरा अधिकार नहीं रहा। भारतीय नारी तो उत्सर्गमयी है, उसका प्रेम सर्वस्व समर्पण रहा है। मैं इसी परंपरा का पालन करूंगी। पहले ही जिन्हें मैंने फूल सा कोमल समझा था, वो प्रस्तर की भांति कठोर निकले। अब और कोई चारा ही क्या है? अब चाहे जैसे भी थे, मुझे तो उनके प्रेम की अलग जगानी ही पड़ेगी। वो मुझे भाई थे, उनकी रूप माधुरी में निष्ठुरता की छाया मुझे नहीं दिखी थी और न ही मैंने देखी कोई हृदयहीनता। मुझे तो जैसे उनके नेत्रों ने एक मौन आमंत्रण दिया था, बस मैंने उसे स्वीकार किया। मैं कहाँ जानती थी कि उनकी इस देवोपम सरलता के चारों ओर महान दायित्वों की कठोर श्रृंखलाएं बंधी हुई हैं।
1: विजयश्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैंने उनके प्रेम से

0: विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैं उनके प्रेम से तुम्हें परानमुख ना कर सकी राजकुमारी। मुझे जिन कड़वे परिणामों को प्रेम के नाम पर भोगना पड़ रहा है, संभवतः वो सब अग्नि की लपटों के दृढ़ालिंगन से कहीं अधिक हैं। जीवन में प्रलयंकर हाहाकार है, संताप है, रुदन है।
1: राजकुमारी जी, युवराज विजयश्रवा का भृत्य आरण्यक भुवन मोहिनी को बुलाने आया है। उसे स्वयं राजकुमार ने बुलवाया है।
0: मुझे?
2: जा, तू उस भृत्य से कह दे कि अभी वो राजकुमारी के पास है, अवकाश पाते ही युवराज की सेवा में उपस्थित होगी।
1: जो आज्ञा।
2: सखी, आज मैं तुमसे एक याचना कर रही हूं, क्षमा करो, अपने अंतर से इस भाव को हटा दो कि तुम एक साधारण नर्तकी हो और मैं राजपुत्री हूं। मैं देख रही हूं कि तुम एक असाधारण नारी हो। मैंने तुम्हारे विनम्र शिष्या बनकर तुमसे संगीत का ज्ञान और उसकी सिद्धि प्राप्त की है। मैं धन्य भाव से तुम्हारी कृतज्ञ हूं।
0: इन सबके लिए हमारी तुम्हारे बीच कृतज्ञता प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी। कृतज्ञता तो मैं प्रकट करती हूं प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण। विधि विधान ने मुझे महाराज आदित्य सेन की शरण में ला पटका और उन्होंने साहसपूर्वक अभयदान प्रदान किया। अन्यथा भारत सम्राट द्वारा निर्वासित किए जाने पर मुझे निश्चय हो गया था कि मेरा समग्र जीवन विपत्तियों की गाथा बन जाएगा। मेरी सहायता करने का कोई भी साहस न करेगा। महाराज ने मुझ पर जो दया प्रकट की है, उसकी सराहना मैं किस मुख से करूं?
2: सखी, ये भी तुम्हारी महानता है जो सदैव पिताजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हो। अन्यथा राष्ट्र की कुशल और सर्वश्रेष्ठ गायिका होने के नाते तुम जहां भी जाती, वहीं लुब्ध मधुब की भांति मानव सागर को उद्वेलित करती। तुम्हें प्रत्येक स्थान पर आदर और पुरस्कार प्राप्त होता। क्या तुम जानती हो कि युवराज के बुलाने पर भी मैंने तुम्हें क्यों रोक लिया?
0: नहीं।
2: तो सुनो सखी, मैं तुमसे जो कहने जा रही थी वो ये कि हम तुम दोनों एक ही पद की कामनी है। मैं भली भांति समझ गई हूं कि युवराज तुम्हें सर्वांतःकरण से प्यार करते हैं। जो कुछ अपनी ओर से वे तुम्हें प्रदान कर चुके हैं, उसे वो किसी मूल्य पर लौटा न सकेंगे। और मैं वही चाह रही हूं जो तुम्हें युवराज से प्राप्त हो चुका है, वो है प्रेम, जो एक बार में एक ही को दिया जा सकता है। मैं समझती हूं कि युवराज द्वारा वो प्रेम भी तुम्हें प्राप्त हो चुका है। यदि मुझे अपने प्रेम से युवराज पुरस्कृत भी करना चाहे तो वो एक बार समर्पित किया हुआ होगा। भुवन मोहिनी, तुम स्वयं एक नारी हो, तुम्हें ज्ञात है कि नारी हृदय रहस्य और गोपनीयता के परिधि के भीतर रहकर अपने निश्चल प्रेम की ज्योति जलाता है। वो प्रीतम की मधुमेह मोहिनी मूर्ति अपने हृदय मंदिर में आसीन कर बड़ी गोपनीयता के साथ उस प्रेम देवता की आराधना में लीन हो जाता है। वह आवरण में नारी हृदय ज्यों का त्यों कौतूहलहीन रहता है, परंतु अंदर ही अंदर प्रेमानुभूतियों के उत्तप्त आंसुओं से रोता है, सुलगता है। अवश्य अश्रुओं की धारा में नारी हृदय चलते हुए भी शांति का अनुभव करता है। उत्पीड़ित और प्रताड़ित होकर भी वो बाहर से मुस्कुराता है। सखी, तुम्हें भी ये सब ज्ञात है।

0: तो राजपुत्री होकर भी भिकारिणी की भांति तुमसे तुम्हारे प्रियतम की भीख मांगती हूं। बोलो बोलो, मुझे निराश तो ना करोगी?
1: नहीं राजकुमारी, यदि वे तुम्हें स्नेह और आदर प्रदान कर सकें तो मैं अपने को धन्य समझूंगी और चाहूंगी कि वो तुम्हें अपने नेत्रों की पुतली बनाकर तुम्हारी दृष्टि से देखें, तुम्हारे कानों से सुने, तुम्हारी हृदय से बात करें। तुम्हारे अस्तित्व में उनके प्रेम की लय हो और वो पूरी तरह से तुममय हो जाएं। मैं अपने को भाग्यशालिनी समझूंगी। भारत साम्राज्ञी का गौरवमय पद तुम्हारे प्रतिष्ठित होने पर ही उज्जवल रहेगा, अन्यथा मुझ नर्तकी की छाया परंपरागत महानता की सीमा का अतिक्रमण कर उसे तुच्छ बना देगी।
0: ओह भुवन मोहिनी,
1: जाइए राजकुमारी। राजकुमार विजय श्रवा की गौरवमयी प्रेसी और जीवन संगनी बनिए। मैं आप दोनों के प्रेम संबंधों में कभी भी ईर्ष्या का विष सम्मिलित नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि इस अभागिनी नर्तकी ने भी कभी भावी सम्राट की प्रेमिका होने का गौरव प्राप्त किया था। मैं अपना अहोभाग्य यही समझूंगी कि विजय श्रवा की जीवन संगनी खोजने के श्रेय का एक अंश मुझे भी प्राप्त हुआ था। राजकुमारी, जिस दिन सम्राट द्युमत सेन ने मुझे धारानगरी से निर्वासित किया था, उसी समय मैंने निश्चित किया था कि मैं राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी राजकन्या का परिणय विजय श्रवा से कराऊंगी और अपनी खोज में लगी हुई ही इंद्रप्रस्थ नगरी में आई थी। इसके पूर्व भी अनेक बार मुझे नरेशों से ज्ञात हुआ था कि महाराज आदित्य सेन की एकमात्र कन्या ही राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। इसीलिए मेरी रानी, अपने विजय श्रवा के लिए मैंने आपको चुना है। मुझसे भय मत खाइएगा। मैं आपकी अमृत प्रेम प्याली में अपने द्वेष की विषैली घृणा कभी नहीं भरूंगी।
0: इसी विश्वास और इसी पवित्र देन के कारण तुम मुझसे बहुत ऊंची हो। मैं आज तुम्हारे प्रदान किए हुए प्रेम और प्रीतम द्वारा अपने स्नेह का संसार बसाने का कौतूहल में स्वप्न देख रही हूं। देखो देखो, कभी मुझे भी पुरस्कृत करेगा या नहीं मेरे रूप का देवता?
1: तो चलिए,
0: कहा
1: राजकुमार विजय श्रवा से मिलने।
0: लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं।
1: तो क्या हुआ, क्या अभी भी आपको मुझ पर शंका है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं उनके दर्शन की बेचैनी को कुछ पलों के लिए शांत करना चाहती हूँ।
1: ये मेरे लिए भी सुखद होगा राजकुमारी।
2: ओहो, मित्र विजय शर्मा से मिलने भुवन मोहिनी देवी अभी तक नहीं आई। अब मुझे तो भय लग रहा है कि उन्हें बुलाने के लिए युवराज मुझे कहीं फिर से ना भेज दें। अरे ये क्या, लगता है कि भुवन मोहिनी आ गई, परंतु राजसी रथ में आए। प्रतीत हो रहा है कि भुवन मोहिनी के संग राजकुमारी भी पधार गई। अब क्या होगा? आइए आइए, राजकुमारी जी को अरण्यक का अंजुलिबद्ध सादर प्रणाम।
0: शुभ हो अरण्यक, जाओ देव से निवेदन करो कि भुवन मोहिनी के साथ राजकन्या चंद्रहासिनी भी दर्शन के लिए उपस्थित हैं।
2: अवश्य देवी। अरे मित्र मित्र मित्र, अचंभा हो गया।
3: क्या हुआ अरण्यक?
2: भुवन मोहिनी आ गई हैं।
3: इसमें अचंभा क्या, उन्हें तो हमने ही बुलवाया था।

0: उनके साथ राजकुमारी जी भी हैं।
1: क्या?
0: हाँ,
1: चलो उनकी अगवानी के लिए चलता हूं।
0: यही उचित भी होगा। आइए ये देखिए।
2: शुभ स्वागत है राजकुमारी और भुवन मोहिनी का। देवी, कुटिया के अंदर पधारिए। मैं अतिथि सेवा द्वारा अपने को सौभाग्यशाली और कृतार्थ समझूंगा। ओह भुवन मोहिनी, हम लोग दीर्घ वियोग के पश्चात आज मिले हैं। तुम्हारे साथ राजपुत्री चंद्रहासिनी भी हैं। बोलो, इस शुभागमन के अवसर पर मुझे किस प्रकार अतिथि पूजा और सत्कार करनी चाहिए?
3: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
2: एवमस्तु।
3: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 88.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजने को है, मीडियम वेव पर अब हमारी सभा प्रारंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपको सुनवाएंगे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से विभूषित होने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करेंगी। मैं शालिनी मित्तल अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर नितेश अरोड़ा के साथ आकाशवाणी की ओर से इस गरिमामय समारोह का सीधा प्रसारण आप तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मौजूद हैं। ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले उन व्यक्तित्वों के प्रति भारत की सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा, गरिमामय वातावरण और राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति समारोह की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, अपना अपना स्थान ले चुके हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही साथ और मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसद सदस्य, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां और गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही गौरव के साथ उपस्थित हैं वो पद्म पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य, जिन्हें आज देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान

0: पर वापस बैठ चुके हैं। नितिश,
1: ए वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी फ्रॉम गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ ऑनरेबल प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द पद्मा अवार्ड्स 2026 एट द सेकेंड सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ दिस ईयर। The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan, and 56

0: recognized work of distinguished and is of work of distinction, and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry.
1: और नितिश हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ गए हैं क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है. सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में. सभी को नमस्कार करते हुए.
0: Well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud moment, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in lifetime.
1: Indeed, बिल्कुल सही कहा नितिश. यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है. ये सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व और उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी का भी परिचायक है. श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों की विशेषता यह है कि इनमें भारत के महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा, लोक कला, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं. यही कारण है कि पद्म पुरस्कार भारत की विविधता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत प्रतिबिंब माने जाते हैं. हर पुरस्कार के साथ एक प्रेरणा प्रेरक जीवन यात्रा जुड़ी होती है नितिश.
0: Absolutely.
1: इन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, सेवा और प्रतिबद्धता से देश को नई ऊर्जा प्रदान की है. आज का ये समारोह भारत की उस भावना का उत्सव है जिसमें उत्कृष्टता को पहचान और सम्मान दिया जाता है.
0: Well, Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The awards are given in various disciplines and the fields of activities that include art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of high order, and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. And the bugler announced the arrival of Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंड मास्टर सूबेदार बीपी कुरुंग के नेतृत्व में।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। धन्यवाद।
0: और अब औपचारिक रूप से एक स्वीकृति ले गई माननीय राष्ट्रपति से कि आज विधिवत
1: पद्म विभूषण
0: की शुरुआत की जा रही है।
1: श्री पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा।
0: नारायण जी के नाम से लोकप्रिय श्री पी नारायण राष्ट्रवादी पत्रकारिता के दिग्गज और एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आयोजक हैं, जिन्होंने केरल में कभी हाशिए पर रहने वाली विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
2: Beyond journalism, Sri Narayanan made significant contributions as a scholarly author and a prolific translator. His work as a translator includes the works of V.D. Savarkar, M.S. Galwalkar and Deen Dayal Upadhyay from English and Hindi into Malayalam.
0: बहुत ही गौरव का क्षण।
1: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस, लोक कार्य।
0: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आपको आपराधिक कानून, पुलिस सुधार और निजी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए काफी जाना जाता है। न्यायमूर्ति टॉमस को वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अन्य पुरस्कारों में भी सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे उनको पुरस्कार दिए मिल चुके हैं।
2: जस्टिस राय टॉमस इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, पुलिस रिफॉर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन इन प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन फील्ड्स। इज रिसीविंग द पद्म विभूषण फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।

0: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस।
1: डॉक्टर विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से जूनियर स्पर्धाओं में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और फिर ओपन इवेंट्स में गए। लगातार 20 वर्षों तक डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है, जिसने टीम को 2 बार फाइनल में पहुंचाया है। एक ऐसी उपलब्धि जो भारत के ओपन युग में इतिहास में एक बेजोड़ एग्जाम्पल मानी जाती है। अपना पुरस्कार लेते हुए
0: डॉक्टर SKM महिला नंदन समाज सेवा।
1: SKM कंपनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर SKM मलियानंदन एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ विभिन्न सामाजिक कल्याण ट्रस्टों के संस्थापक और एक उपभोक्ता कार्यकर्ता भी हैं।
2: Dr. Melanandan has received several awards and honors, Padma Shri Award for Social Work in 2013, National Productivity Awards, he got it for 8 times, and National Safety Awards 2 times, Agriculture and Processed Food Products Export Promotion Awards 5 times.
1: अपना पुरस्कार ग्रहण करते हैं
0: श्री ममूटी कला फिल्म अभिनय।
1: ममूटी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो दक्षिण भारतीय भाषा के सिनेमा में है, लेकिन मुख्य रूप से मलयालम फिल्म उद्योग में काम करते हैं। 5 दशकों के करियर में श्री ममूटी ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से मलयालम के साथ साथ कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी के कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है।
2: Clad is in a formal band gala. Shri Mamuti is widely respected as a goodwill ambassador for numerous social causes also and the patron for several
0: Shri
2: charitable initiatives.
0: Shri Vellapalli Nateshan Lok Karya.
1: श्री वेल्लापल्ली नटेश्वर केरल के प्रमुख राजनीतिक नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। श्री नटेश्वर ने के मार्गदर्शन में शिक्षा योगों का सबसे स्थायी योगदान रहा है। श्री नारायण ट्रस्ट के माध्यम से इस नेटवर्क में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी केंद्रों सहित संस्थानों की संख्या 40 से बढ़कर 130 हो गई है।
2: And she meditation also introduced family units at the shakha level, extending the organization's reach into households and providing platform for women's leadership, educational support, savings promotion, social awareness and community cohesion beyond Kerala. SNDP units were established in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Delhi and the Gulf. Receiving the Padma Bhushan from Honorable President.
0: Dr. Datta Treodu Nori, Chikitsa Oncology.
1: आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशस्त ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अग्रणी चिकित्सक और महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी नेता हैं। 4 दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नल मेडिकल सेंटर और में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और अध्यक्ष के साथ ही कैंसर केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य किया है।
2: डॉक्टर नोरी हैज एक्सटेंडेड हिज एक्सपर्टाइज इन एक्सपीरियंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स इन नियरली 2000। In early 2000, he helped the government of Andhra Pradesh.
0: Shri Shibu Soren, Marnopranth, Lok Karya, unki patni, Shrimati Rupi Soren.
1: Shri Shibu Soren ko Marnopranth, ye award diya ja raha hai, jo unki patni lengi aur maane Rashtrapati niche utarte hue, unko ye padak pradan karne ke liye. पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सोरेन का 4 अगस्त 2025 में निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धापूर्वक दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, सामाजिक सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से वो एक थे।
2: For millions, Shri Soren was more than a political leader. He was a custodian of memory, resistance and hope.
0: अलका याज्ञिक कला पार्श्व गायन।
1: और अब नाम बुलाया गया है अलका याज्ञिक का, जो भारत की एक प्रख्यात पार्श्व गायिका है और कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकार है। माननीय प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हुए झुककर प्रणाम कर रही हैं। हम देख पा रहे हैं 4 दशक से अधिक की उल्लेखनीय गायन यात्रा में उनका मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को अत्यधिक समृद्ध किया है।
2: Born on 20th of March

0: 1916, Kolkata, West Bengal, Srimati Yagnik embarked upon her musical journey with a strong classical foundation that shaped her distinctive artistic sensibility and vocal identity. Her most famous song was Ek Do Teen.
1: बहुत सारे उनके गाने हैं जो अति प्रिय रहे हैं।
2: श्री नूरुद्दीन अहमद कला निर्देशन।
0: Now we move on to Padmashri awardees. And Shri Nuruddin Ahmed is a visionary art director, sculptor and set designer who has refined the visual landscape of Ahamiya art and culture through his pioneering work in mobile theatre, films and television. The box.
1: आप एक दूरदर्शी कला निर्देशक, मूर्तिकार और सेट डिजाइनर हैं जिन्होंने मोबाइल थिएटर, फिल्म और टेलीविजन तथा स्मारकीय सार्वजनिक चित्रों में अपने अग्रणी कार्य के माध्यम से असमिया कला और संस्कृति के परिदृश्य को पुनः परिभाषित किया है। माननीय राष्ट्रपति से अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए
2: श्री तिरुवरूर भक्त वसलम कला मृदंगम।
1: श्री तिरुवरूर भक्त वत्सलम एक प्रतिष्ठित मृदंगम कलाकार है और कर्नाटक संगीत की काल्य वाद्य परंपरा के सबसे विशिष्ट कलाकार हैं। श्री भक्त वत्सलम ने 9 वर्ष की आयु से ही अपनी माता के साथ संगीत समारोह में जाना प्रारंभ कर दिया था और इनके साथ एक खास बात जो मैं बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को कि इनके असाधारण संगीत प्रतिभा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। उन्हें बीच की बी हाई श्रेणी को पार करते हुए बी ग्रेड से सीधे ए ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया जो उस समय अत्यंत असामान्य उपलब्धि मानी जाती थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें प्रतिष्ठित ए टॉप ग्रेड भी प्राप्त हुआ। अपना सम्मान
0: Shri Thiruvarar Vatsalam was rooted in Tanjore style. And
2: Dr. Krishnamurti Balasubramanyam, Vigyan Evam Engineering.
1: अब नाम पुकारा गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालसुब्रमण्यम का जो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और एक संस्था निर्माता भी हैं। आपने IIT कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रतिष्ठित एल्टन फेलोशिप से सम्मानित होने पर सीधे PhD करने के लिए मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में स्कूल ऑफ मेटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
2: श्री ब्रिज लाल भट्ट समाज सेवा।
0: Shri Brijlal Bhatt is known for his distinguished social service promoting peace and harmony after his exemplary contribution during active service in Jammu and Kashmir. Under his payback stage of life now, Shri Bhatt is now working as Chairman Administrative Committee, Shri Ramakrishna Mahasammelan Ashram Vivekanand Kendra, Nagdandi, Anantnag, Kashmir. Clad in a bandgala, two-piece suit, receiving the Padma Shri from the president.
2: Shri Tarun Bhattacharya, Kala Santur.
1: श्री तरुण भट्टाचार्य जी का जो प्रख्यात संतूर वादक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी है और शततंत्री वीणा वादन शैली में नए परिवर्तन की आधार शिक्षा रखी है। उनकी नई तकनीकों और तरीकों ने शततंत्री वीणा को एक व्यापक रूप से सीखा और प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र बना दिया है।
0: श्री भट्टाचार्य इज क्रेडिटेड फॉर हैविंग क्रिएटेड न्यू हिंदुस्तानी क्लासिकल रागस राग गंगा बेस्ड ऑन स्वच्छ गंगा अभियान And also having created
2: Shri Jyotish Devnath Kala Hatkarga Bunai.
1: और अगला नाम श्री ज्योतिष देवनाथ का जो पारंपरिक हथकरघा बुनाई और मलमल और चांदनी साड़ियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक हैं। ये बंगाल के समृद्ध वस्त्र परंपराओं के प्रमुख शिल्पकार हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की सबसे बारीक और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण बुनाई विरासतों में से एक को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया है।
0: Beyond his personal artistry, Shri Devnath has made significant contribution as a mentor and
2: Dr. Jogesh Deori Krishi.
1: अगला नाम डॉक्टर जोगेश देओरी का आसान एक प्रसिद्ध रेशम उत्पादन विशेषज्ञ है जिन्हें रेशम उद्योग विशेष रूप से एरी रेशम में अपने अग्रणी योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
0: Absolutely, Dr. Deori is Eri silk pioneer credited with modernizing traditional Eri silk rearing methods. He's a strong advocate for Eri silk ahimsa, a non-violent silk, viewing it as a sustainable future for Assam's economy and rural youth. I think he's wearing the Eri silk.
2: Shri Biklaya Ladkia Dinda Kala Lok Sangeet.

0: अगला नाम श्री डोरा, आप एक प्रतिष्ठित आदिवासी लोक संगीतकार हैं और बालवंडा गांव तालुका जवार के प्रतिष्ठित तरपा कलाकार हैं। उन्होंने 7 दशकों से अधिक समय से अपना जीवन आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न और पवित्र अंग तरपा संगीत को प्रशिक्षित करने में, संरक्षित करने में बिताया है।
1: When in addition to being a master performer, Shri Dhinda has served the tribal community as a bhagat, that is a traditional
2: Dr. Ermida Fernandez, Chikitsa, Neonatology.
0: प्रसिद्ध न्यूनेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस को भारत में न्यूनेटोलॉजी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है।
1: डॉक्टर फर्नांडिस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मार्केटली रिड्यूसिंग द हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग प्री टर्म एंड सिक न्यूनेटल्स एट LTMG हॉस्पिटल थ्रू लो कॉस्ट सस्टेनेबल इनोवेशंस। क्लैड इन अ ग्रीन साड़ी, शी इज proudly receiving this award from Honorable President
2: Dr. Chandramouli Gaddamunugu, Vigyan Evam Engineering.
0: आप एक भूतपूर्व उत्कृष्ट वैज्ञानिक, परियोजना निदेशक, आकाश रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद DRDO के कार्यक्रम निदेशक हैं।
1: Despite numerous hurdles over a demanding journey spanning more than 3 decades, Dr. Chandramouli remains steadfast in his focus, inspiring teams across diverse organizations, resolving complex technical challenges for surface-to-air missile technology.
2: Dr. Prem Lal Gautam, Vigyan Evam Engineering.
0: डॉक्टर प्रेम लाल गौतम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुल अधिपति हैं। एक प्रख्यात पादप प्रजनक शिक्षक, मार्गदर्शक, अनुसंधान प्रबंधक, संस्था निर्माता हैं।
1: डॉक्टर गौतम वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ डजन इंप्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज, पायनियर्ड नेशनल सिस्टम ऑफ प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन, एक्सेलरेटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वैराइटीज।
2: डॉक्टर राजा स्थापति कलियप्पा गौंडर, कला कांस्य शिल्प।
0: अगला नाम कांस्य कला के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अपने कौशल को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गौंडर ने अपने संस्थान में युवा पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की हैं।
1: And due to Dr. Gonder's avid interest in arts, he also started focusing on preserving the old temples, which was struggling due to financial stress and left without maintenance. He renovated more than 100 temples which were left to perish and rebuilt them, and finally conducted Kumbh Abhishekam. What a great achievement.
2: Dr. Padma Gurmed, Chikitsa, Sowa Rigpa.
0: डॉक्टर पद्मा गुरमेद राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह के संस्थापक निदेशक और लद्दाख अमची सभा लेह लद्दाख के अध्यक्ष हैं। वे आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को औपचारिक मान्यता दिलाने तथा लद्दाख एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यवस्थित विकास के अग्रदूत में से एक माने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री ग्रहण करते हैं, एक अत्यंत गौरव का पल।
2: श्री अशोक कुमार हल्दर, साहित्य एवं शिक्षा।
1: श्री अशोक कुमार हल्दर इज ए नोटेड इंडियन राइटर एंड सोशल थिंकर फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन एडिशन टू बुक्स, श्री हल्दर हैज ऑथर्ड अप्रॉक्सिमेटली 3,000 आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। हिज फर्स्ट वॉक्ड अप टू द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड इज नाउ वॉकिंग स्लोली to receive his Padmashri award.
0: उन्होंने अपना जीवन साहित्य और सामाजिक चेतना तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम में द्वारा लेते हुए श्री अशोक कुमार हल्दर।
2: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, चिकित्सा हीमोफीलिया।
1: Dr. Suresh Hanagwadi, founder and president of Karnataka Hemophilia Society, Devangiri, KHS, is a distinguished medical professional, visionary institution builder, and a tireless advocate for persons with hemophilia and rare bleeding

0: Dios mío. Himself being suffering from severe hemophilia B, he transformed personal adversity into a lifelong mission of service, dedicating over 4 decades in improving diagnosis, treatment, rehabilitation, and dignity for thousands of affected hemophilia.
1: Mamma Rashpati, Dr. Suresh Hanagvadiko, Padma Shri se sammanit karte hain.
0: A proud moment for his family members who are all standing up and cheering.
2: Dr. Charan Hembram, Sahitya Evam Shiksha, Santhali.
1: Shri Charan Hembram, एक संथाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक कार्यकर्ता है जिन्होंने उड़ीसा में संथाली भाषा साहित्य और संस्कृति के प्रचार पर प्रसार और संस्थागत विकास में असाधारण योगदान दिया है। कई सरकारी और साहित्यिक पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने संथाली ऑडियो एल्बम के लिए गीत भी रचे और आज भी संथाली साहित्य और संगीत विरासत में योगदान दे रहे हैं।
0: श्री हेमराम प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन संथाली एजुकेशन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टेन्योर एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन ओडिशा अंडर एएस ECE. Rai Rangpur from 1992 to 2004.
2: Dr. Shubha Venkatesh Iyengar, Vigyan Evam Engineering.
1: डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर एक प्रख्यात वैज्ञानिक है जिनके काम ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है। उनका करियर स्वदेशी नवाचार की शक्ति का प्रमाण है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
0: Receiving the Padma Shri, Dr. Iyengar's most significant innovations are Drishti, visibility imaging system, and aviation weather observation system, which have enhanced the safety of all Indian international airports as they are mandatory equipments.
2: Shri T. T. Jagannathan, Marnoprant, Vyapar Evam Udyog, Unke Putra, Shri Mukund Thatte.
1: Shri Jagannathan ko Marnoprant. पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है जब उनके पुत्र रिसीव करेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को श्री जगन्नाथन का निधन हो गया था। आप भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण और कुकवेयर कंपनी टीटी के प्रेस्टिज लिमिटेड का नेतृत्व 5 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने किया था।
0: As chairman of the TTK group, Shri Jagannath built a reputation for quality, innovation,
2: संत निरंजन दास जी अध्यात्म।
1: और अगला नाम पुकारा गया है पद्मश्री के लिए संत निरंजन दास जी जो विश्व प्रसिद्ध डेरा सचखंड पल्लान के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गोविंद रविदास जन्मस्थान मंदिर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
0: सिंस अगस्त 9, 1994 संत निरंजन दास जी हैज बीन लीडिंग डेरा सचखंड पल्लान। हिज टेन्योर हैज बीन मार्क्ड बाय अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशंस टू सोशल वेलफेयर। He oversees the Sant Sarvandas Charitable Hospital in Jalandhar, a 150-bed multi-speciality facility providing affordable care.
2: Professor Vijayanathan Kamakoti, Vigyan Evam Engineering.
1: IIT Madras Chennai के निदेशक प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को मुख्य उत्पादों में बदलने हेतु अपने करियर को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
0: In the academic realm, Shri Kamakoti has guided around 20 PhD and 30 MS by research scholars. He has published over 200 extensively cited papers in
2: Professor Mangala Kapoor साहित्य एवं शिक्षा शास्त्रीय संगीत।
1: अगला नाम पुकारा गया है प्रोफेसर मंगला कपूर का। आप एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका संगीतज्ञ शिक्षाविद हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में म्यूजिक में PhD में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कई साल लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा की और वर्ष 2019 में संगीत विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हैं।
0: प्रोफेसर कपूर हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थ्रू परफॉर्मेंस एंड रिसर्च। शी इज द ऑथर ऑफ द 5 बुक्स ऑन म्यूजिक इंक्लूडिंग हर ऑटोबायोग्राफी सीरत।
1: प्रोफेसर मंगला कपूर माननीय राष्ट्रपति से पद्मश्री ग्रहण करते हैं।
2: डॉक्टर अशोक खाड़े

0: व्यापार एवं उद्योग।
1: अगला नाम डॉक्टर अशोक खाड़े का। आप डीएलएस ऑफशोर लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, जो व्यापक रूप से एक अग्रणी टेक्नोक्रेट उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की स्वदेशी अपतटीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विदेशी संविदाकारों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2: डॉक्टर खाड़े बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर इन
0: 1975
2: मुंबई,
0: साहित्य एवं शिक्षा,
2: वर्क्ड इन स्ट्रक्चर डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल।
1: और अब अगला नाम खोकलोवा। डॉक्टर खोकलोवा को भारतीय भाषा शास्त्र विभाग एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे इंडोलॉजिकल अध्ययन में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं।
2: At present, Dr. Khokhilova is teaching different linguistic courses at Moscow State University, which are very popular among students, Hindi at BA and MA in Punjabi.
1: आप एक दूरदर्शी नेता, एक विख्यात शिक्षाविद और ग्रामीण उत्थान के लिए एक अथक योद्धा हैं। डॉक्टर कोरे का जीवन देश की स्वावलंबन और शैक्षिक उत्कृष्टता की यात्रा का दर्पण है।
2: Among his most significant achievements is the establishment and development of two universities, KLE Academy and Higher Education and Research, KHER, and KLE Technological University.
0: श्रीमती पखीला लेक्थेपी, कला कर्बी गीत।
1: श्रीमती पखीला लेक्थेपी असम की कर्बी गीतों के प्रसिद्ध गायिका हैं। वर्ष 1978 में उन्हें आकाशवाणी गुवाहाटी में गाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने कर्बी आधुनिक और लोकगीत प्रस्तुत किए। उन्होंने दूरदर्शन गुवाहाटी में भी कर्बी आधुनिक गीत प्रस्तुत किए।
2: श्रीमती लेक्थेपी स्टार्टेड कंपोजिंग ओन सॉन्ग एंड लिरिक्स ऑन कर्बी मॉडर्न सॉन्ग इन द ईयर 1975 फॉर कर्बी यूथ फेस्टिवल्स। शी गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हर ओन कंपोजिशन लिरिक सॉन्ग इन कर्बी यूथ फेस्टिवल इन 1976। अटायर्ड इन अ ट्रेडिशनल
1: पारंपरिक परिधान में, असम के परिधान में, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और उनके परिजन उनके लिए ताली बजाते हुए।
0: श्री रामा रेड्डी मामिदी मरणोपरांत सहकारिता, उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला रेड्डी।
1: श्री रामा रेड्डी मामिदी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनकी पत्नी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। आप भारत में व्यापक रूप से आधुनिक सहकारी कानून के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते थे।
2: श्री मामिदी's achievements have transformed rural livelihoods, established 585 thrift and credit cooperatives benefiting over 2.69 lakh members in Telangana with an annual turnover of 570 crore. श्री मामिदी passed away on 26th October 2025. And the award is
0: Shri
2: received by her
0: Ra wife. Vesu Mani, Civil Seva.
1: Shri RVS Mani, एक सुपर परिचित सिविल सेवक हैं। श्री मणि ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का सामना करना पड़ा। श्री मणि एक निष्ठावान सरकारी सेवक के रूप में पूरी तरह से राजनीति निरपेक्ष रहकर कार्य किया।
2: श्री मणि has written 5 books of national importance and has worked as a sincere government servant in an apolitical manner. Credits were given to him for handling several sensitive
0: Shrimati
2: cases without
0: Kala
2: falling
0: Mandalam,
2: prey
0: Vimla
2: to
0: Menin,
2: any
0: Kala
2: vested interest.
0: Mohini Attam.
1: आप वर्तमान मोहिनी अट्टम शैली के पीछे की दृष्टि और प्रेरणा हैं, चाहे वो इसकी सुंदरता, वेशभूषा, केशभूषा, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि प्रस्तुति पैटर्न का तरीका हो, जो आज मोहिनी अट्टम की पहचान बन चुका है।
2: श्रीमती मेनन From the young age, recognized the power of art as a nation's vital soft power and developed her journey to using classical dance as a medium for peace, unity, inclusion, and human development.

श्री व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली मरणोपरांत खेल कुश्ती कोच, उनकी पत्नी श्रीमती मरीन सारिया।

0: 23 जून 2025 को इनका निधन हो गया था और मरणोपरांत व्यामृदमीर मिस्त विश्वली को ये पद्मश्री सम्मानित किया जा रहा है, जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती कोच थे। उनकी पत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम द्वारा।
1: He is remembered as one of the greatest coaches in the world of freestyle wrestling, having trained numerous Olympic medals.
2: Shri Maganti Murli Mohan, Kala, Film, Abhinay.
0: Shri Murli Mohan, एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सदस्य रहे और आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी अपने कार्य किया।
1: In 1973, श्री मुरली मोहन entered the film industry and recently completed golden jubilee of his film career. He received numerous honors and played lead roles in over 350 films.
2: श्री मोहन नागर, समाज सेवा।
0: मध्य प्रदेश की जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल के सचिव श्री मोहन नागर को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
1: श्री नागर हैज हैड लेड सेवरल लैंडमार्क कैंपेन्स। इन 2006 ही अंडरटूक ए पदयात्रा टू एडवांस एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मोबिलाइजिंग लोकल कम्युनिटीज to institutionalize Jal Mahotsav, a river festival in the Machala River catchment area. Dr. Punyamurthy
2: Nateshan, Pashu Chikitsa.
0: Dr. Punyamurthy Nateshan, a pratishthit Pashu Aushadh Vigyani, शिक्षाविद और ट्रांसलेशन वैज्ञानिक है। उन्होंने चार दशकों से अधिक के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार कार्य के माध्यम से भारत में एथनो वेटरनरी चिकित्सा को उन्नत किया है।
1: A nationally and internationally acknowledged expert, Dr. Nateshan has served as a trainer and consultant to organizations such as Department of Animal Husbandry and Dairying.
2: Kala Ikat Bunai.
0: और अगला नाम पुकारा गया है श्री सरत कुमार पात्र का। आप एक प्रसिद्ध हरकरघर शिल्पकार हैं जो इकत बुनाई में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। श्री पात्र द्वारा अतिरिक्त पाना तकनीक से बुने हुए कोणार्क वर्ष एक उल्लेखनीय कृति है।
1: श्री पात्र कोणार्क टेक्सटाइल यूजिंग एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक इज अनदर रिमार्केबल वर्क। ही सक्सेसफुली डेवलप्ड नियरली 50 शेड्स यूजिंग नेचुरल डाइज। His efforts in creating human figures and calligraphic art based on some famous literary arts. An eminent handloom craftsman, he is widely known for his contribution in ikat weaving.
2: Shri Simanchal Patra, Kala Lok Rangmanch.
0: श्री श्रीमांचल पात्र लोक रंगमंच की दुनिया के एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। उन्हें कला जगत में भारत के एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच प्रहलाद नाटक की भीष्म पितामह के रूप में जाना और सम्मानित किया जाता है। ये नाटक अपने जीवंत संगीत नाटकीय कथ्यों और सशक्त पात्रों के लिए जाना जाता है।
1: Born on 7th July 1927, श्री पात्रा hails from a poor rural family. And as per family tradition and culture, he is inclined to Vaishnavism. Shri Patra, from the age of 7, learnt Sakhi Nata, said to be precursor of classical Odissi dance, where male boys act as female Sakhi, from Guru Shri Narsingh Pradhan.
2: Guru Sangyu Sang Ponganar, Kala लोक कला।
0: गुरु पोंगनर नागा वादी वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं। वो इसकी स्थापना के बाद से लोक नृत्य, संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। और आप सुन पा रहे हैं वो, क्योंकि अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पधारे हैं तो सभी लोग तालियां बजा कर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा परिधान है नितिश, पारंपरिक परिधान है और इन्हें इनकी असाधारण उपलब्धियों और एओ नागा लोक कलाओं के अभिनव योगदान के फलस्वरूप यह प्रसिद्धि मिली है।
2: गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद, कला अभिनय।
1: श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद इज ए फेमस तेलुगु फिल्म एक्टर। For over four decades, starting with his debut in 1977,

0: Shri Gadde Babu graced more than 286 films across 6 languages, even stepping into international waters. His genius lies in his special touch, versatile roles in family stories, social messages and comedy that hit home, blended with skills like mind mimicry.
1: वो सभी को घूम के उन्होंने घूम घूम के नमस्कार किया और अब माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए और पर्दे के पीछे नम्र विनय मेहनती और बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपने मध्य वर्गीय संस्कारों से जुड़े हुए श्री गद्दे बाबू
2: सुश्री सविता पूनिया खेल हॉकी.
0: Ms. Savita Punia, the former captain and the current goalkeeper of the Indian women's national field hockey team, is one of India's most acclaimed sports personality. With an unprecedented 308 international caps, she is the first Indian woman goalkeeper to achieve this extraordinary milestone, exemplifying enduring resilience, skill and commitment. Truly the wall.
1: बिल्कुल भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर सुश्री सविता पूनिया माने
2: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री कनद पुरकायस्थ.
1: अगला नाम श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है. 7 जनवरी 2026 को आपका निधन हो गया था. आप असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे.
0: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ breathed his last on 7th January 2026 and his son is receiving the Padma Shri on behalf of his father.
2: Shri Bhagwan Das Raikwar, Marnoparant, Khel, Bundeli Martial Art, unki putra Shri Rajkumar Raikwar.
1: Agla puraskar bhi Marnoparant Shri Bhagwan Das Raikwar ko diya ja raha hai jo unke पुत्र माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे. श्री भगवान दास रायकवार पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं के संरक्षक तथा गुरु के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित हैं.
0: श्री भगवान दास रायकवार इज वाइडली रिस्पेक्टेड एज ए पेट्रन एंड टीचर ऑफ ट्रेडिशनल बुंदेली मार्शल आर्ट्स एंड फोक आर्ट्स इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग एंड मूवमेंट प्रैक्टिसेस.
2: प्रोफेसर के रामस्वामी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग.
1: Professor K. Ramaswamy, Karpakam Academy of Higher Education and Research, जो कि एक मानित विश्वविद्यालय है, के कुलपति, कुल अधिपति, चांसलर है. वो कृषि जैव द्रव्य के रूपांतरण भारत में एनरोबिक माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापक तथा प्राकृतिक खेती की दिशा में मृदा जैविकी के पुनरुद्धार के लिए कार्यरत हैं.
0: As a member of Planning Commission, Professor Ramaswamy pioneered the traditional agriculture through
2: Shri
0: ethnic
2: Madhavan
0: medicine
2: Ranganathan
0: and husbandry.
2: Kala Abhinay.
1: और अब नाम बताया गया श्री माधवन रंगनाथन का और आप सुन पाएंगे श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट आप तक भी पहुंच रही होगी. और माधवन सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नमस्कार की मुद्रा में और अब माननीय राष्ट्रपति की ओर कदम बढ़ाए हैं अपने पद्मश्री को ग्रहण करने के लिए. माननीय प्रधान राष्ट्रपति उनको ये सम्मान दे रहे हैं. उनको मैडी के नाम से जाना जाता है, एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता निर्माता निर्देशक और लोकप्रिय व्यक्ति हैं.
2: श्रीमती रंजनी एवं श्रीमती गायत्री कला कर्नाटक संगीत.
0: श्रीमती रंजनी एंड श्रीमती गायत्री आर एमिनेंट कर्नाटक म्यूजिशियंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर सस्टेन्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज ए परफॉर्मिंग ड्यूओ फॉर नियरली फोर डेकेड्स.
1: श्रीमती रंजनी और श्रीमती गायत्री को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलाई मा मणि पुरस्कार, समागान मंथरा पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार उन्हें हासिल हो चुके हैं. प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीतकार हैं जिन्होंने लगभग 4 दशकों
2: श्रीमती गायत्री
1: गायन का कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठित है इस क्षेत्र में.
0: Shrimati Gayatri along with Shrimati Ranjani have received numerous honors in recognition of their contribution to Indian classical music, including the Kalai Mamami Award from the Government of Tamil Nadu.
2: Dr. Anil Kumar Rastogi, Kala Natya Kala.
1: Dr. Anil Kumar Rastogi, कलाकार, एक वैज्ञानिक और एक परोपकारी का अनूठा मिश्रण है. डॉक्टर रस्तोगी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से जैव रसायन में MSc की डिग्री प्राप्त की और बाद में सूक्ष्म

0: जीवविज्ञान में पीएचडी की।
1: डॉक्टर रसोगी हैज बीन वर्किंग इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर 64 इयर्स, हैविंग स्टेज अराउंड 1000 शोज ऑफ 100 प्लेज ऑल ओवर द कंट्री। He staged his 100th play Beyond the Curtain in December 2025.
2: Professor Dr. Mahendra Nath Roy, Vigyan Evam Engineering.
0: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ राय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला संकायों में पूर्व डीन और अलीपुर द्वार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं।
1: Beyond academia, he is recognized as a social worker, particularly for the efforts in uplifting the common people. He has donated on several organizations and schools on behalf of his parents for the development of the society.

0: श्री सतीश शाह मरणोपरांत कला अभिनय, उनके भाई श्री अरविंद मामनिया।
1: श्री सतीश शाह, उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 को हो गया था। सतीश शाह रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में भारत के सबसे सम्मानित तो लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जो अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग, बहुमुखी प्रतिभा और गहरे मानवीय भावों के प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे।
2: His roles in the films like जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम एंड numerous other mainstream and parallel films।
0: प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
2: You'll be remembered by many. Next is Professor Pratik Sharma. He's a professor of medicine at the University of Kansas School of Medicine and holds the Ernick Blaylock Endowed Professorship at the Kansas University Cancer Center.
1: प्रोफेसर शर्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोस्कोपी और जीआई कैंसर क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गैस्ट्रोएंट्रोलाइटल रोगों के और कैंसर
0: रोहित गुरुनाथ शर्मा
1: के लिए अपना
0: खेल क्रिकेट।
2: द मैन इन ब्लू एंड ऑल्सो इन व्हाइट व्हेन ही प्लेज टेस्ट क्रिकेट टुडे कैन बी सीन वेयरिंग ए फॉर्मल ब्लैक बंद गला टू पीस सूट वॉकिंग आउट टू द प्रेसिडेंट टू रिसीव पद्मश्री।
1: बिल्कुल, और भारतीय खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते ऋषि शर्मा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है।
2: As captain of the international team, Shri Sharma had led India to significant global triumphs, including ICC Men's T20 World Championship 2024.
1: अगला नाम सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू। आप पंजाब पुलिस से उप महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त एक प्रेरणादायक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें व्यापक रूप से झाड़ू योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी मौन लेकिन शक्तिशाली प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशंसा हासिल की है।
2: बॉर्न ऑन 6 जून 1938 इन विलेज गग्गरपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब, श्री सिद्धू स्टिल वॉकिंग टॉल टू रिसीव हिज अवार्ड। He joined the Punjab Police as an inspector in 1963. In 1981, he was promoted to the Indian Police Service, IPS.

0: रघुपत सिंह मरणोपरांत कृषि, उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमवती।
1: श्री रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। इनका निधन 1 जुलाई 2025 को हो गया था। आप एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और पारंपरिक बीजों के संरक्षण और प्रचार के लिए आपको जाना जाता है। मुरादाबाद जिले के समथल गांव में आप जन्मे थे।
2: श्री सिंह पास्ड अवे ऑन 1 जुलाई 2025। ही वाज आल्सो एक्टिव इन सोशल लाइफ। ही कंटेस्टेड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस फ्रॉम चंदौसी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 1980 एंड 1985 बट डिड नॉट विन। Later, he won the election as a member of the Block Panchayat, Biladi, in 1995, and again in 2020.
1: Shri Raghupat Singh ji ki dharmpatni ye samman grahan karte
0: hain. Shri Khemraj Sundaryal, Kala, Hatkargha Bunai.
1: उत्तराखंड के सुमरी

0: गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे श्री सुंदरियाल ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर उत्तराखंड से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हासिल किया। खेतों की जुताई से लेकर भारत में वस्त्र परिदृश्य को बदलने तक की उनकी यात्रा अद्वितीय दृढ़ता, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
1: श्री सुंदरियाल आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड हट्टा टेक्निक इन पंज दरी लूम फॉर रिप्लेसिंग पंजा एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ वीवर्स। Also in 1980, he introduced polyester yarn in hand loom under Petrofil project.
2: Dr. Budhuri Tati, Samaj Seva.
0: माता शंखिनी महिला उत्थान केंद्र हिरनार के अध्यक्ष डॉक्टर पुथरी ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है।
1: डॉक्टर बुधरी विद द हेल्प ऑफ सोशल सपोर्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर वीमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए परमानेंट वीमेन्स ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग इन बारसू by building the Hiranar Women's Upliftment Center. They are working to empower women with self-reliance.
2: Dr. Kumarasamy Thangaraj, Vigyan Evam Engineering.
0: Dr. Thangaraj ke anuvanshik adhyan ने पहली बार यह स्थापित किया कि अंडमान जनजातियां प्रथम आधुनिक मानव हैं जो लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए थे। यह प्रारंभिक मानव प्रवासन के स्पष्टीकरण में एक बड़ी सफलता है।
1: डॉक्टर कुमारस्वामी थंगराज इज द सीएसआईआर भटनगर फेलो एट द सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद।
2: मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उनकी पत्नी श्रीमती हीरामणि टूडू।
0: श्री रविलाल टूडू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। आपका निधन 4 जून 2026 को हो गया। आप वर्धमान पश्चिम बंगाल से संथाली साहित्य के लेखक थे जिन्होंने संथाली नाटक और भाषा संरक्षण में बहुत योगदान दिया है। उनकी धर्मपत्नी पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति से लेते हुए
1: श्री टूडू वॉज अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2015 फॉर हिज प्ले पारसी खाते इन द संथाली लैंग्वेज कैटेगरी। इन एडिशन टू हिज नेशनल रिकग्निशन ही रिसीव्ड द बंग भूषण अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2022 ऑनरिंग हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू संथाली लिटरेचर एंड कल्चर।
2: श्री नरेश चंद्र देव वर्मा साहित्य एवं शिक्षा।
0: और अब पद्मश्री में अगला नाम पुकारा गया है श्री नरेश चंद्र देव वर्मा का। आप त्रिपुरा राज्य में साहित्य भाषा संस्कृति और सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से व्याप्त है। इन क्षेत्रों में उनके योगदान ने संपूर्ण समुदाय पर एक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है।
1: एट प्रेजेंट श्री वर्मा सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कोकोबोरोक साहित्य परिषद ए लीडिंग लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द त्रिपुरी लैंग्वेज।
2: श्री शशि शेखर वेम्पटी साहित्य एवं शिक्षा।
0: श्री शशि शेखर वेम्पटी डीप टेक फॉर भारत फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। इससे पहले वो भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण में इनके क्रांतिकारी नेतृत्व के लिए अपार प्रसिद्धि प्राप्त है।
1: एज द यंगेस्ट सीईओ ऑफ प्रसार भारती बिटवीन 2017 टू 2022 श्री वेम्पटी रोज टू द चैलेंज बाय लॉन्चिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स।
0: श्री चिरंजी लाल यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के प्रसिद्ध पीतल उत्कीर्णक हैं। आपने विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2010 में ढाका बांग्लादेश गए और 2015 में उन्होंने भारत सरकार के हस्तशिल्प निर्यात वर्धन परिषद के माध्यम से फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अपनी कला का प्रदर्शन किया।
1: श्री यादव सर्व्ड एज मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 1980 टू 1980

0: of India.
1: इस समय हम देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ गए हैं। सभागार का वातावरण गर्व, प्रेरणा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत है। आज सम्मानित सभी विभूतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और इसी के साथ वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के दूसरे नागरिक सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये समारोह राष्ट्र की ओर से उन महान व्यक्तित्वों को नमन है जिन्होंने अपने कर्म और योगदान से भारत को समृद्ध बनाया है। आकाशवाणी की ओर से सभी सम्मानित विभूतियों को हार्दिक बधाई। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से पद्म पुरस्कार समारोह 2026 का सीधा प्रसारण। तकनीकी प्रमुख श्री जितेंद्र भरूथी के साथ तकनीकी टीम के सदस्य थे शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्रित, सुमित कटियार और हेमराज मीणा। ओबी इंचार्ज थे मधुलिका श्रीवास्तव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। और अब अपने साथी कमेंटेटर नितिश अरोड़ा के साथ मैं शालिनी मित्तल आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका

0: यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओ, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, मां की गोद ने और नदियों की घाटियों में। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हां चल खचल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज

0: धोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
1: के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सकोगे।

0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है,
2: चल।
1: ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए। कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा?
4: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
2: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो चलो
3: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला

मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत भूल भुलैया फिल्म से, आवाज अरिजीत सिंह की, समीर का गीत और प्रीतम का संगीत।

अगला गीत जर्सी फिल्म से, आवाज सचेत टंडन की, शैली का गीत और सचेत का संगीत।

अरुणिता कांचीलाल और शाश्वत सिंह की आवाजों में अब सुनिए सीतारमन फिल्म का ये नगमा, कुमार का गीत और संगीत विशाल चंद्रशेखर का।

तुलसी कुमार और अखिल सचदेवा को सुनिए फिल्म कबीर सिंह से। कुमार के लिखे गीत की धुन बनाई है अखिल सचदेवा ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा आर्टिकल 15 से, आवाजें यसीर देसाई और आकांक्षा शर्मा की, रश्मि विराग का गीत और पीयूष शंकर का संगीत।

0: गीत संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है अंतराल का।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी करियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी

परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है।

0: अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज की इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:15 बजे और रात 10 बजे। उर्दू प्रोग्राम कहकशा आप सुनेंगे 9:30 बजे। आज का मुख्य आकर्षण है महफिल समा। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन, ताल तीन ताल। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। और अब हम आपको बता दें कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। पहले जानकारी देते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण होगा, जिसमें 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे और 2:30 बजे। 12:30 बजे संग्रहालय के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक भुवन मोहिनी की छठवी कड़ी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोक संगीत, 2:45 बजे सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत सुना जा सकेगा कल दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 पर 6:30 बजे और रात 8:15 बजे। कल शाम 6 बजे प्रसारित होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुर्खियों में। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8 बजे। कल रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कल रात 10 बजे सुनिएगा हसन सादत मंटो का लिखा नाटक हतक, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। कल रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग होगा यमन। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के कुछ मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 बजे सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे रमेश पुरी गोस्वामी के गाए गीत। क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सुन सकेंगे कल सुबह 9:30 बजे। जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी कल सुबह 10 बजे और 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला संसार। कल सुबह 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे सरवर हुसैन का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल सुबह के कार्यक्रम। और हम आपको बता दें कि आकाशवाणी भोपाल से कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुनेंगे डॉक्टर दिलीप जाट से ली गई भेंटवार्ता। विषय है सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों के खेत बचाव अभियान में भूमिका। और श्रोताओं हम ये भी बता दें कि आज शाम 7:21 पर आप ग्राम सभा में सुनेंगे डॉक्टर मीना यादव से ली गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवाड़ को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IAS प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, बोले धारा 370 हटाकर साकार हुआ एक विधान का सपना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल रहा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के समाजसेवी मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। वहीं प्रदेश के बुंदेली मार्शल आर्ट के जनक भगवान दास रायकवाड़ को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि समाज सेवा एवं खेल जगत में इनके उल्लेखनीय योगदान ने न केवल मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS 2024 बैच के 183 अधिकारी प्रशिक्षुओं से संवाद किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने युवा अधिकारियों को नागरिक देवो भव का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे लाखों लोगों की आकांक्षाएं और समस्याएं जुड़ी होती हैं, इसलिए शासन को संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च होंगे।
1: सुजालपुर में लॉ कॉलेज के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना तथा उसके लिए पदों की स्वीकृति दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में अगले 3 वर्षों में 315 स्कूलों को हाईस्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
0: इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम बारिश हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम बारिश से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है दो

0: जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का सपना एक देश एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें 106 सदस्यों को शामिल किया गया है और 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉ. वीरेंद्र कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को जगह मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक इस वर्ष परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। भोपाल के आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में आज 5 दिवसीय आदिरंग शिल्पकार महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर शिल्पकारों से संवाद किया। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए 140 से अधिक जनजातीय शिल्पकारों ने अपनी पारंपरिक कला और हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज मंत्रालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुविधा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड के महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए हैं। इस राउंड में प्रदेश के 1,29,265 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है, जिनमें 94,703 स्नातक और 34,562 स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल हैं। विभाग ने विद्यार्थियों से 30 जून तक प्रवेश शुल्क जमा करने का आग्रह किया है। भोपाल में अवैध कफ सिरप निर्माण और सप्लाई नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड राहुल कुशवाहा उर्फ सलमान को STF ने तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार आरोपी वहां पहचान छिपाकर रह रहा था, जिसे तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर पकड़ा गया। भोपाल लाकर विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकेश मालिक की अदालत में पेश किए जाने पर उसे 27 जून तक रिमांड पर भेजा गया है। अब बात करते हैं मौसम की। मानसून की रफ्तार धीमी होने से प्रदेश में सामान्य से 52% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि आज बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम और धार जिले में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र में खरीफ 2026 वर्ष के तहत सोयाबीन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सागर की पुलिस प्रशिक्षण शाला PTS में नव आरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में ITI और 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कटनी कलेक्टर ने अस्पतालों में पर्याप्त एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपील की है कि सांप काटने पर झाड़फूंक के बजाय अस्पतालों में इलाज कराएं। अशोकनगर में जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। नर्मदापुरम की ग्राम पंचायत उमरिया में आयोजित जन कल्याण शिविर में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया। और किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की मई 2026 की रैंकिंग में झाबुआ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवोभव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल कार्यक्रम केर सबै सुनैया हमार किसान भाई करण का ही लखन भाई के यथा जोग राम राम। सुनैयाओ सयन में कहावा करत रहे हैं कि आधा जेठ अषाढ़ कहावे, पर अब जो मनैयो का देखत है या कि मनैये समयों का अनकत है तो लागत नहीं आए। खेती में परिवर्तन और मौसम की मिजाज से अब यह कहानू देखी कहानो कहा झूठ यस लागत ही। और पहले जैसन जेठ महीना शुरू होता है वैसा किसान भाई में तेजी आ जात रही है। शुरू शुरू माँ घर के छबाई खेतबन के ही बधबन के ही मोगी मोघा की बधाई और जो जोड़ीदार बरदा नगान रहे या कि हेरा जा या कि मान ली पत विपत अगर हुआ ना रहा तो फिर जोड़ीदार बरदा के हेराई और बेसहानी शुरू हो जात रही है। या मेर से कामन मा बाढ़ यस आ जात रही है और पहले जे सचेत ना रहें तो यह कहा है कि माँ कि मास आषाढ़ गौतरी कीन अब तो एक कर खेती हो गई ही। ऐसने बहुत खेती और मौसमन का लेके तमाम कहानूती हैं बात यहीं से सयान में बतावा था अपन एक जन बघेली के सयान जनबहा कवि बाबूलाल दाहिया जी में के तमाम खेती किसानी की बात खूब सुनौबा करा थे और खूब मेर मेर की बात बताऊबा करा थे। सुनैया जनबही हमेशा अपने का मजबूत करा थी मन से और तमाम ज्ञान से और कहाँ न कहाँ होकर अपन जीवन माही

0: बड़ा अस्तित्व है, ओकर बड़ी जरूरत परत है। सुनैयाओ, अगर जेका निगही जन बही रहा थी, अच्छा जन बहा कवनो क्षेत्र में ओके लगे जानकारी अच्छी है, तो वह दूसरे से ओका अलग करती है। और समाज में जो पढ़ा लिखा देखी रहत है, तो वह पुनेट रहत है, तो ओकर अलगय जलवा अलगय मिजाज होत है। आ नहीं तो कतेको पौने आठू बागत है, कहीं कहीं परे रहा था, को नहीं पूछे। एक शब्द आऊ कबो कबो अपना पाची सुनत हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, एक तरह से कही कि सल की दुनिया के प्रतिनिधि कुछ अपने बात या मुद्दन का लेके एक ऐसा जाखा एकउटा थी जेका संयुक्त राष्ट्र संघ कहा था, जेमा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से एकर गठन कीनगा। और एकर जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जेमा 193 देश सदस्य हाँ। और यह संगठन जौन है वह मानव अधिकार के रक्षा, मानवीय सहायता पहुँचाऊ, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय कानून का बनाए रखे के काम करत है। सुनैया वे के अलावा जैसा माने गरीबी हो गया, भुखमरी, अशिक्षा, जलवायु संकटन के जैसन मुद्दन के समाधान करब और बुनियादी अधिकारन के स्वतंत्रता के रक्षा करब रहा है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हाँ, 6 अंग में जैसन महासभा हो गए, सुरक्षा परिषद हो गए, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गए, सचिवालय, न्याय परिषद, इस सब अंगन के माध्यम से तमाम संपर्क काम और क्रियान्वयन केर व्यवस्था बनाई जाती। हुआ जब उन्हें लोग रहा था, काम करा था, व्यवस्था बनावा था, उन्हों के देखी बड़ा अभिन्न भूमिका है यह तमाम व्यवस्था बनावे माही और उनका पूरे विश्व माही शांति व्यवस्था संचालित करे माही और एक दूसरे के आदान प्रदान, एक दूसरे के ऊपर हस्ताक्षेप, तमाम ऐसा व्यवस्था रहती है जेका मनाई लोक सेवक कहा थे। पर चूंकि अब संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आवा थे, तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा कहा था। देखिए हुआ मेयर मेयर के अधिकारी, कर्मचारी, कानूनविद और माने वैज्ञानिक, माने कई एक प्रकार के हुआ अधिकारी कर्मचारी हाँ, जे पूरे विश्व में ही तमाम जो उन घटना होती हैं उन्हें हस्तक्षेप करब और उनका समझब, उनका आकलन करब, लोगन से विचार विमर्श करब, ऐसा तमाम काम जौन है वो करा था और प्रेरित करा था। सुनैया हुआ कई एक मेयर के एजेंडा बनाए जा था और एजेंडा कसल के विश्व माही दीन जाते कि भाई अपना का यह विषय में यह दर की चर्चा करे का है या कि कौनो माली पैमाना है। जिसान शिक्षा की बात हो गया तो शिक्षा में बहुत मेयर के नियम और नई संरचना का बनावा था, फिर उनका विश्व माही उनका जन्म ही दे थे, उनका जिन्हें सुचारू रूप से संचालन हो सके, यही मेयर से और जो गंभीर बीमारी है उन चर्चा यह मेयर से संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वहाँ लोग हाँ, लोक सेवक हाँ, वो तमाम मेयर के विचार विमर्श कई के उनका मूल रूप प्रदान करा था। तो आज इसने जो वहाँ लोक सेवक हैं उनका दिन आए जिका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कहा थे। यह हर साल 23 जून का दुनिया भर में मनावा जाता है। यह दिवस के जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि समुदाय के विकास में ही मने सहायक हो, काम हो और लोगन के बीच में ही जौन हुआ अधिकारी कर्मचारी हैं तो उनकी ही व्यवस्था बनाए पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा काम है और उनका निर्वहन करब, बड़े सुचारू रूप से चलाऊ, ये एक थे जिम्मेदारी के काम है। तो जितने भर जन संयुक्त लोक सेवक हैं उनके दिन में ही उनका शुभकामना सहित देश के उन्नति बरक्कत में वही मेयर से हमेशा सहयोगी रहें, यही मेयर से अपन व्यवस्था बनाए रहें।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी ये

0: एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: हम बच्चे मवेशी पाली थे, मवेशी से कई एक मेर के आपन रोजगार उद्यम जुड़ा है, चाहे दूध के हो, चाहे खेती किसानी के नीता हो और ऊन के हो, कई एक मेर के मनई पशुपालन करत है, पशुपालन से कई एक मेर के मनई नफा लेत है। पै होत का है कि हम बच्चे पशुपालन में ही पशुअन के आहार है, आहार के संतुलन नहीं बना पाई। एक मेरा चाहे वो नवजात माने हो, चाहे वह सयान हुईगा हो, चाहे वह गैया हो, चाहे कभाई काम के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से, हर पशुअन के अलग अलग अलग अलग समय में उनको जरूरत पड़ थी। तो माने पशुअन के जो दाना है उनका तैयार करे की जो पद्धति है वो कौन मेर हो सका थी, कौन मेर से उनकर खवाई पियाई एमर से व्यवस्था हो। तो मैंने आई एकर जनबही ले थे अपने कार्यक्रम में। आज हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार ओझा जी और अपना से बात कर रहे हैं विपिन भाई। तो मैंने यही ये जनबही ले
3: किसान भाई बहनों, राम राम। पशु दाना तैयार करने की पद्धतियां क्या क्या हैं, किस तरह से इसको तैयार करें, और ये महत्वपूर्ण बातचीत होगी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ओझा साहब से, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा से। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: पशु चारा, पशु दाना, कई बार ये भी कहा जाता खली चूनी, तो पशु दाने का क्या अर्थ निकालें?
4: सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि संतुलित आहार पशुओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संतुलित आहार से पशुओं में न सिर्फ दूध उत्पादन क्षमता बढ़ती है, साथ ही उनके स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पशुपालक भाई है हमारे, वो क्या करते हैं, जो दाना उनके पास उपलब्ध है जैसा भी उपलब्ध है वैसा ही पशु को खिला देते हैं।
3: जी जी।
4: और पशु की शारीरिक अवस्था का ध्यान नहीं देते, बल्कि हमें करना ऐसा चाहिए कि वयस्क पशु या फिर गाभिन पशु या फिर बच्चे के आहार अलग अलग मात्रा में
3: जितनी उनकी आवश्यकता है।
4: जी। तो दाने निर्माण में हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि दाने को संतुलित मात्रा में मिला के पशु खिलाएंगे तो ना सिर्फ उत्पादकता बढ़ेगी, साथ ही जो दाने की कीमत है, जो खर्चा है हमारे किसान भाइयों का, वो भी कम होगा। तो संतुलित आहार में हमें दाना भी शामिल करना है, चारा भी शामिल करना है।
3: जी जी।
4: और फिर दाने को हम अलग से बनाते हैं मिला करके।
3: तो ये पशु आहार क्या घर में बना सकते हैं हमारे पशुपालक भाई?
4: जी बिल्कुल। घर पर दाना मिश्रण बनाने के लिए हमें दाने में हमें खली हमें मिलानी 25 से 35 किलो।
3: जी।
4: फिर दाने में आपको मक्का, जौ या गेहूं तीनों मिला के या फिर कोई भी 25 से 35 किलो।
3: जी।
4: फिर चोकर की मात्रा मिला सकते हैं 10 से 25 किलो के बीच में। दालों के छिलके का हम उपयोग कर सकते हैं 5 से 20 किलो और साथ ही

0: मिश्रण 2 किलो और विटामिन की थोड़ी सी मात्रा 20 से 30 ग्राम, जो कि हमारे दाने को पूरी तरह से संतुलित बना देगी
1: जी
0: तथा पशुओं की विभिन्न जो ऊर्जा या प्रोटीन या फिर जो भी विटामिन की आवश्यकता है उसको पूरा करने में सक्षम रहेगी।
1: पशुदाना तैयार करने में कौन कौन से अवयव हैं, क्या महत्व रहता है उसका?
0: जी, पशु पशुओं जो दाने होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऊर्जा के स्रोत जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और एक होते हैं प्रोटीन के स्रोत।
1: जी,
0: तो जब भी हम दाना बनाते हैं तो हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि जो भी हम उनके अवयव लेंगे या जो स्रोत लेंगे
1: जी
0: उसे प्रोटीन प्रदान करने वाले पदार्थ भी हो और ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ भी हो, और साथ ही हमें थोड़ी सी मात्रा में विटामिन खनिज लवण और इम्यून बूस्टर मिलाना चाहिए।
1: अब दाना मिश्रण जो तैयार करना है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे।
0: जी, जो मेनली हम डेयरी एनिमल का जो दाना बनाते हैं उसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसमें कम से कम 14 से 16% होनी चाहिए और कुल पाच्य तत्व जो होते हैं वो होने चाहिए 65 से 68% के बीच। इसकी प्राप्ति के लिए हमें 25 से 35% खली होनी चाहिए उसमें। मोटे अनाज जैसे कि जौ, ज्वार, मक्का इत्यादि 25 से 35% होना चाहिए। साथ ही गेहूं को चोकर या फिर चुनी या भूसी 10 से 30% के बीच में और 2% खनिज लवण और 1% साधारण नमक, इस प्रकार हम दाना बना सकते हैं।
1: ओझा साहब, चूंकि ये काम हमें रोज करना है और दिन में बल्कि 2-3 बार करना है, तो हमें कुछ ऐसी सामान्य विधि बताएं।
0: घर में किसान भाई का किसी का एक पशु या 2 पशु या 3 पशु कम मात्रा में हमें इसकी आवश्यकता होती है, तो हमें ज्यादा ना बना के 10 किलो दाना बना सकते हैं। हम 10 किलो दाना बनाएंगे तो हमारा 2-3 दिन का काम चल जाएगा। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या लेंगे, अनाज लेंगे, चोकर लेंगे और खली, और तीनों की बराबर मात्रा, जैसे कि हमें 10 किलो बनाना है तो 3 किलो 300 ग्राम तीनों की मात्रा हमने ले ली, अनाज की, चोकर की और खली की, और इसमें 100 ग्राम हमने नमक मिला दिया और 200 ग्राम खनिज मिश्रण। इसमें हमें ध्यान इस बात का देना कि दाना बनाने से पहले गेहूं और मक्का को अच्छी तरह पीस लेना है, क्योंकि जितना अच्छी तरह पिसा होगा तो दाना जो उनका मिश्रण अच्छा बनेगा उसका, और जो खली है उसको भी कूट लेना चाहिए हमें। और यदि मान लीजिए खली को हम कूट नहीं सकते तो उसको दाना बनाने से 1 दिन पहले हम उसको भिगो देंगे पानी में
1: जी,
0: जिससे को हाथ दबाने से अच्छे से
1: मिल जाएगा,
0: तीनों को अच्छी तरह से मिला करके, और इस दाने को हम चारे या घास के साथ मिला के सानी बनाकर पशु को खिला सकते हैं।
1: जी जी जी, शुरुआत में आपने कहा था कि दाना हर पशु का एक जैसा नहीं होता है, जिसकी जैसी आवश्यकता होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता तो हमारे गो पशुओं की है दूध उत्पादन।
0: जी जी,
1: तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि दुधारू पशुओं का संतुलित आहार वो कैसे तैयार करें, कितनी कितनी मात्रा में क्या मिलाए।
0: दुधारू पशुओं के लिए हमें ध्यान रखना है, यदि गाय है हमारी तो गाय को 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो दाना देना चाहिए, मतलब यदि वो 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको हमें 4 किलो दाना देना पड़ेगा।
1: जी,
0: ऐसे ही भैंस जो है भैंस के लिए 2 लीटर दूध के लिए उसको 1 किलो दाना देना पड़ेगा, यदि 10 लीटर दूध देगी तो जस्ट आधा दाना, 5 किलो दाना में देना पड़ेगा। यदि हमारा एनिमल ड्राई है, दूध नहीं दे रहा है, सिर्फ हमें उसको शारीरिक आवश्यकताओं के लिए देना है तो
1: गाभिन है।
0: जी, तो 1.5 किलो दाना में प्रतिदिन देना है उसको।
1: जी जी,
0: और भैंस के लिए 2 किलो देना है। यदि 6 महीने से ऊपर गाभिन हो गया है
1: अच्छा,
0: तो हमें 1 से 1.5 किलो दाना अतिरिक्त देना है, जो 2 किलो प्लस 1 किलो और, मतलब 3 किलो दाना गाय के लिए और 3.5 किलो दाना भैंस के लिए।
1: जी,
0: और यदि बछड़ा या बछड़िया है तो उनको 1 से लेकर 2.5 किलो के बीच में दाना देते हैं उनकी उम्र के अनुसार, कि 6 महीने का होगा तो 1 किलो, 1 साल से ऊपर बछड़ा है तो उसके लिए 2 किलो
1: देना है।
0: और हमारे पास बैल हैं खेतों में काम करने वाले हैं तो उन्हें भी हम 2 से 2.5 किलो दे सकते हैं।
1: जी,
0: और यदि खेतों में काम नहीं करते तो 1 किलो देके हमारा काम चल जाएगा। कुछ हमारे किसान भाइयों के पास जानवर ज्यादा मात्रा में रहते हैं तो कम से कम 100 किलो दाना बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दाना लेंगे, दाना में मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा, जो भी किसान पास उपलब्ध हो, जो उसे सस्ता पड़े उसकी मात्रा ले ले, 35% ये हमें लेना है, दाना लेना है,
1: मतलब 35 किलो।
0: जी, 35 किलो, यदि 100 किलो बनाना है 35 किलो ये हमें ले लेंगे। साथ में 35 किलो हम लेंगे खली, खली कोई भी हो सकती है, चाहे सरसों की खली हो, मूंगफली की, बिनौला की, अलसी खली, जो भी उपलब्ध हो
1: जी, जी,
0: उसको
1: जी।
0: लेना है 32 किलो, और साथ में फिर चोकर, गेहूं का चोकर या फिर चना या फिर दालों की चूरी, ये 35 किलो।
1: अच्छा,
0: अब इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में, जैसे 35 किलो, 32 और 35, इसको अच्छे से मिला लेना है, और ये पूरी तरह से मिल जाएंगे तो हमें 2 किलो खनिज लवण और 1 किलो नमक ऊपर डाल देना है।
1: दुधारू पशुओं की बात हम कर ही रहे थे तो आपने उनका भी एक तरीका बताया था कि किस तरह से उसको लेके चलना है, उनका जो संतुलित दाना मिश्रण जो होता है दुधारू पशुओं का वो कैसे बनाए।
0: पशुओं के दाना मिश्रण काम आने वाले पदार्थों का नाम जान लेने ही सिर्फ किसान भाइयों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान पशुओं का राशन जो कैलकुलेशन करने के लिए काफी नहीं होता है। एक पशुपालक को इससे प्राप्त होने वाले पाचक तत्व, जैसे कि उसमें कितना प्रोटीन है या कितना पाचक तत्व है, कितनी ऊर्जा है, इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। अब चूंकि हमारे किसान भाइयों के लिए ये सब चीजें इतना आसान है, इसलिए कुछ मैं आपको उदाहरण सहित बता सकता हूँ कि आप इस दाना को नोट कर लें, और यदि आपके पास ऐसे अवयव होंगे तो आप इनको मिलाकर दाना बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मक्का जो या जाइए तो आप 40 किलो मक्का जो या जाइए में इसको किसी एक ले लीजिए, 17 किलो बिनौले की खली ले लीजिए, उसमें मूंगफली खली 15 किलो मिला सकते हैं आप, और गेहूं को चोकर 25 किलो, और मिनरल मिक्सचर 2 किलो और साधारण नमक 1 किलो, इस प्रकार आपका 100 किलो का एक दाना बन जाएगा। यदि मान लीजिए आपके पास सिर्फ जौ है और सरसों खल अब यूज करना चाहते हैं तो 30 किलो आप जौ ले लीजिए, 25 किलो सरसों की खल, 22 किलो बिनौले की खल और 20 किलो गेहूं का चोकर और मिनरल मिक्सचर और नमक 2 किलो और 1 किलो मिला के आपका एक दाना और बन जाएगा। एक और आप बना सकते हैं, यदि मक्का और जौ आपके पास है तो 40 किलो आप मक्का या जौ ले लीजिए, मूंगफली की आपके पास खली है तो 20 किलो ले लीजिए, दालों की चूरी 17 किलो, चावल की पॉलिश 20 किलो, मिनरल मिक्सचर और नमक मिला के आप 100 किलो दाना बना सकते हैं। एक यदि मान लीजिए आप गेहूं का उपयोग करना चाहते हो, गेहूं 32 किलो आप ले लीजिए, सरसों खली 10 किलो, मूंगफली खली 10 किलो और बिनौली खली 10 किलो, साथ में दालों का चूरा 10 किलो,

0: 25 किलो चोकर और 2 किलो मिनरल मिर्च और 1 किलो नमक। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के अवयवों को मिलाकर आसानी से आप 100 किलो दाना बना सकते हैं। ऊपर दिया गया कोई भी संतुलितार भूसे के साथ आप सानी कर खिला सकते हैं। और यदि आपके पास हरा चारा उपलब्ध है तो आप 4 से 5 किलो हरा चारा देकर जानवरों की पूरी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं।
1: जी जी जी, इनका दाना मिश्रण आपने बताया कि इस तरह तैयार करना है, वहाँ ऐसी कौन कौन सी बारीक बातें हैं जिसको भी ध्यान में रखना है?
0: जब भी हम पशु आहार तैयार करते हैं या पशुओं के दाना का मिश्रण हम ग्रहण बनाते हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि पशु की अवस्था कैसी है, मतलब गाभिन है कि दूध दे रहा है कि शुष्क अवस्था में, उसके हिसाब से उसका शुष्क पदार्थ प्रोटीन और उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहले निर्धारण करेंगे। फिर आवश्यकता अनुसार हम विभिन्न अवयवों को मिलाकर जैसे दाना, हरा चारा, सूखा चारा आदि मिलाकर पूरा एक बैलेंस राशन जो जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार तैयार करेंगे। जो मात्रा शुष्क पदार्थ के आधार पर आए उसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमने कैलकुलेट किया उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है और जो ऊर्जा की मात्रा है वो उसकी आवश्यकता अनुसार पूरी है कि नहीं है।
1: हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि वो सिर्फ पदार्थ ही पदार्थ रहे, उसका कोई फायदा ही ना हो।
0: मतलब साथ ही आहारों में तत्वों की मात्रा और पशु की ऊर्जा आवश्यकता देखकर निर्धारित करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और यदि किसी तत्व की मात्रा कम है तो उसको पूर्ति करने के लिए हम सबसे सस्ते आहार का उपयोग करेंगे ताकि हमारे जो दाना मिश्रण है वो सस्ता रहे मतलब।
1: जी जी।
0: और यदि कोई ऐसा तत्व है जो कि ज्यादा अवस्था में है तो जो महंगा तत्व उसको हटा देंगे।
1: दाना मिश्रण के क्या गुण हैं और क्या लाभ हो सकते हैं इसके?
0: दाना मिश्रण क्या है, स्पेशली हमारे जो दूध देने वाले एनिमल है उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। जितना हम अच्छा उसको दाना मिश्रण बनाएंगे उससे उसकी विभिन्न न्यूट्रिएंट्स, विभिन्न जो उसकी आवश्यकता उसकी पूर्ति होगी और गाय और भैंस अधिक समय तक दूध देंगे, उनका प्रोडक्शन काफी अच्छा हो जाएगा उनका। साथ ही ये पशुओं को चूंकि स्वादिष्ट लगता है, पौष्टिक लगता है तो उनकी खाने की क्षमता भी बढ़ता है, वो अच्छे से खाते हैं और अच्छे से पाचन होता है और उसकी जो हेल्थ जिसे हम कहते हैं पशु स्वास्थ्य वो भी बढ़ जाता है उसमें। अब चूंकि काफी जल्दी पच भी जाते हैं और जो हम अलग अलग कोई अवयव खिलाते हैं जैसे आपने सिर्फ खली खिलाई या सिर्फ चना खिलाया तो उसे सस्ता पड़ेगा, जो आप मिश्रण अपन खिलाएंगे सस्ता पड़ेगा
1: क्योंकि
0: हम सारे अवयव लेते हैं सस्ते भी लेते हैं महंगे लेते हैं तो ओवरऑल ये सस्ता पड़ता है। और ये पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है क्योंकि हम इसमें खनिज लवण मिलाते हैं, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है पशु की काफी अच्छी होती है। और दूध और घी में बढ़ोतरी होती है, साथ ही जो एक बच्चा देने के बाद जो गैप बनता है वो नहीं होता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: रेगुलर गाभिन होती रहती है,
1: ब्यात मतलब लगातार होती
0: है। जी लगातार।
1: डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी है, हमें आशा है कि ये बहुत ही लाभकर सिद्ध होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: या बाबा हम बंचे बड़ी निकही जन्म ही पान कि कौन कौन मने विधि से ही हम बंचे पशुअन के नीता आहार तैयार कर सकी थे और कौन मेर से उनके सेहत के नीता बड़ी कारगर साबित होते तो ये बहुत निकही जन्म ही हम पंजे पान और जेकर विषय रहा है पशु दाना तैयार करने की पद्धति। चर्चा में विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार ओझा जी और अपना से मैंने चर्चा करत रहे हैं विपिन भाई।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

अभय हम पंचभक्तय मार्मिक बहुत भाव से भरा या विदाई गीत सुनत रहन है कि कौन मेर से हमार पाचन के रिश्तन के संवेदना होती और हर व्यक्ति के अपने रिश्तन के प्रति जो एक भावना होती कि हम की का कौन मेर से उपहारित करब कौन मेर से संस्कारित करब तमाम बड़ा सुंदर हम बन चाहिए भैया विदाई गीत सुनन जी का सुनावत रही हैं रेखा सिंह बघेल। सुनैया ऐसे तमाम हर जीवन के या परिस्थिति होती कि एमा आपदा सुख दुख परिस्थिति सब आवत जात रहती पर कुछ लोग यह जीवन का सूझबूझ आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से अपने बड़ा कैले थे और बड़े हुई जाते हैं जेका बाद में मने उनकर बात का उनके भाव का उनके विचार का मने आंकत है समझत है और उनका गैल में चले के प्रेरित होत है। सुनियो निश्चित रूप से जे व्यक्ति जितना मने सफल होत है या जितना बड़ा होत है ओका उतना तमाम कठिन रास्तन कहीं पार करे पड़त है तमाम जरई जरवा जौन मनुष्य के आपदा के रूप में ही आवा थे उनका किनारे करे पड़त है काटे पड़त है छाटे पड़त है और यह तब होता है जब कोह आदमी के व्यक्तित्व में इन मेर से प्रभाव हो इन मेर से गुण हो। और नहीं तो देखी थी कि आज छोट मोट बातिन में लोग

निर्वार ही नहीं बल्कि रोमनास रोए दुख गावत चलत हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम अच कितने व्यक्ति इनके ऐसा कहानी किस्सा मनी सुनत है घटना सुनत है कि जे विपरीत परिस्थिति में ही बड़ा संघर्ष करके और समाज की खातिर एक प्रेरणा स्रोत बना या कही कि बड़ा सुंदर ऐसा अपने विचारन से काम के। ऐसे तमाम मानवीय प्रवृत्ति में ही जे निर्वार ले थे जे चुनौती का सामना कर लेते वह बड़े संकल्प का धीरे धीरे पूर कर लेते। ऐसे न एक जन महापुरुष रहे भारतीय जनसंघ के संस्थापक प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के मैंने जो जीवन है वो बड़े संघर्ष में और बड़े सिद्धांत में ही पूरा गुजरा और वो अपने संकल्पन के प्रति इतना अडिग रहे कि कईक बेर उनके पास कईक अवसर आए लेकिन वो खा स्वीकारी नहीं बल्कि इसे धकेल के ही अपने सिद्धांत के आगे बढ़ें। सुनइयो आज उनकर पुण्यतिथि आए और ऐसा एक महात्मा जो उनका देश का जोड़े के खातिर जो देश के संस्कृति का मजबूत बनावे के खातिर जो भारत के आत्मा का वो का अपने संघर्षन से लड़के संघर्षन से बढ़ के हुआ अमर हो गया ऐसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे। उनका राज्य पुण्यतिथि का ही बलिदान दिवस के रूप में याद की जाता है। उन स्वतंत्र भारत के पहल उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने साथ है बहुत कम उम्र के मने ऐसे युवा जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। उनका एक नारा रहा एक देश एक निशान एक विधान और जम्मू कश्मीर का भारत में ही पूर्ण रूप से शामिल करे के उनका जो प्रण रहा उनके अनिता बड़ा संघर्ष करीन और अंतिम दम तक में ही वह अपने संकल्प में ही अडिग रहें लड़त रहें। सुनइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी न एक राजनेता रहे बल्कि एक योग शिक्षा विधि बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। वहीं 1917 में मैट्रिक किन 1921 में ही बीए और 1923 में कानून के पढ़ाई की नीता विदेश गए। जब 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के लौटे तब अपन जीवन अपने पैतृक जो पिताजी जो कि शिक्षक रहे और वह परंपरा का अपनाइन अपना पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही नए युवकन का ही जोड़े के क्षेत्र में अपना जुट गए और कई एक साल अध्यापन करे के बाद अपना कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही कुलपति के रूप में ही आसीन हैं और कई एक मेर के नवा अपना काम करण शिक्षा में ही नई विधि का ही कानून में नए मेर से बदलाव पढ़ावे के जो अपन एक तरीका उनका अपन अलग एक भाव रहा। सुनइयो वह समय के राजनीतिक परिस्थिति का देख के उनका लाग कि कौन मेर से विचारधारा परिस्थिति कौन मेर से बदल रही है और उनका एमा आमय चाही और अपन बात रखा चाही। सुनइयो सब कुछ छाण के राजनीति के क्षेत्र में ही प्रवेश करीन और सही सही कही तो मानवता के बड़े उपासक और सिद्धांतवादी रहे और यहीं से उनका अंदर अंदर कहाँ कहाँ यह कोसत रहा कि मैंने हम पढ़े लिखे के बावजूद अगर मान ली कौनो मेर से अन्याय हो रहा है कौनो मेर से विपरीत परिस्थितियाँ आ रही हैं तो वहाँ हम काहे नहीं बोल रहे हैं चूँकि अब कहाँ कहाँ अगर नौकरी पेशा माही रही हैं तो अपन बात ही के कहा माही कुछ साधन जो है वो सीमित हैं पर अगर स्वतंत्र रूप से हर परिस्थिति को छाण के अगर काम करी हैं तो निश्चित रूप से अपन बात का बहुत दूर तक पहुँचा पाई हैं और बहुत बड़े स्तर में रख पाई हैं। तो ऐसा अपन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे उन देश माही जो उनमेर से संस्कृति विरासत माही अलग मेर से विभाजनकारी नीति बनाई जा रही हैं वहीं हमेशा विरोधी रहे। गांधी जी और सरदार पटेल जी के कहे माही पहल अपन मंत्रिमंडल मापन सहयोग उद्योग मंत्री के रूप में दिनहीन एर के बाद हुमा से इस्तीफा दे के फिर कश्मीर गए कश्मीर में उनका परमिशन नहीं मिली तो गिरफ्तार कर ली इनके और ऐसे रहस्यमयी उनका

1953 में ही मृत्यु हो गए। ऐसे महापुरुष का हम पंचे सत सत नमन करी थे, ऐसे महापुरुष से हम पंचे प्रेरित हुई थे। आज के कार्यक्रम कैसन लागे का जन भही अपना पाछे हमारे कार्यक्रम के पता माँ जरूर देव। अब हो लागी चले के जूना तो अपना पाचन से अब हम चाहब आ गया। चौपाल कार्यक्रम के सब सुनैयन का हमारा लखन भाई केर जथा जोग राम राम जय जवान जय किसान।

0: में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस वर्ष सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस वर्ष का पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सम्मान सम्मिलित थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और उनके सफर पर एक नजर डालते हैं।
1: भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तब से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। समय के साथ इन पुरस्कारों का स्वरूप विकसित हुआ और आज पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की एक विशेष पहचान बनी है। अब इन पुरस्कारों को केवल बड़े शहरों या चर्चित नामों तक ही सीमित नहीं रखा जाता। देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की एक और विशेषता ये है कि इनके लिए नामांकन प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति किसी योग्य नागरिक का नाम प्रस्तावित कर सकता है। स्वयं नामांकन की भी व्यवस्था है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की पहचान हो सके। प्राप्त नामांकनों पर विचार करने के लिए हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति गठित की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे औपचारिक अवसरों पर धारण कर सकते हैं। आमतौर पर एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होती। हालांकि मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों और विदेशी नागरिकों या प्रवासी भारतीयों को दिए गए पुरस्कारों को इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता। ये सम्मान कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।
0: इस वर्ष 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक मामलों में, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम को कला के क्षेत्र में, वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को साहित्य

साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत लोक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इस वर्ष 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याज्ञ

0: नूरी दत्तात्रेयुडु भगत सिंह कोश्यारी के आर पलानी स्वामी एस के एम मेलानंदन शतावधिनी आर गणेश और वेलापल्ली नटेशन शामिल हैं। वहीं पीयूष पांडे शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, लेखक शिव संकरी, संगीत साधक तारुण भट्टाचार्य और तृप्ति मुखर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले 40 वर्षों से वे आदिवासी महिलाओं और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी समाचार ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
1: बुधरी ताती जी, आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
2: गांव हीरानार में ही मेरा जन्म है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे। हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर के हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे। तब से माँ बाप के साथ पे माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर

0: पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
1: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है, तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है, तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
2: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रविलाल टुडू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के नुवारा गांव में जन्मे रविलाल टुडू संथाली भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से संथाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का काम किया। वे नाटक, कहानी और रेडियो लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे और उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय रहीं। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2022 में बंगभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। जून 2026 में उनके निधन के बाद ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से उनकी बातचीत के कुछ अंश।
3: आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
4: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो अठवा तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है।
3: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
4: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए।
3: आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
4: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना दूर जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए, यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था

0: काम भी ऐसा ही हम लोग करके आए हैं।
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से वे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरदराज और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, कुपोषण से लड़ने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
2: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियां शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
3: भुजबार में जाना आना तो काफी कठिन था उस समय। हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबुझमाड़ में गए थे।
2: महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रही हैं, वहाँ आपने क्या देखा?
4: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रहते। अभी बहुत सारा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
1: अशोक कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर सिंह को बासमती और पूसा धान सहित धान की कई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से उनकी विशेष बातचीत के कुछ अंश।
5: इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है?
6: मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार, वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है।
5: इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
6: जो हमारी परंपरागत किस्में थीं, अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थीं और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हो, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं, तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था।
5: हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं?
6: क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज, ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।
1: आज का समारोह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने अपने खेल प्रदर्शन, नेतृत्व और उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2 ICC खिताब जीते। उनकी उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री प्रदान किया गया। भारतीय महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है बल्कि वे राष्ट्र की ओर से उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा या उद्योग जगत। पद्म पुरस्कार देश के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान देते हैं। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्र ऐसे ही व्यक्तित्वों को नमन करता है और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आज के कार्यक्रम सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
7: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
8: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कुदरत फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।
9: ये हम नहीं जानते मगर

लता मंगेशकर की आवाज में अब सुनिए हरजाई फिल्म का यह नगमा। निदा फाजली के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने।

आप तो ऐसे ना थे। लीजिए सुनिए इस फिल्म से हेमलता को निदा फाजली का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

मांग भरो सजना। लीजिए सुनिए इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, कुर्बानी फिल्म से, जिसे आवाज दी है कंचन, मनहर और आनंदी। गीत इतिवर का और संगीत कल्याण जी, आनंद जी का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:42 होने को है, वक्त है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार

0: संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
2: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
2: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री

0: सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदिनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9.

0: संभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावनाएं 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबाबंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताज़ा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तजिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर अबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचमबरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतल बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयानात पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर बेस कैंप के

आपकी दोस्त आफरीन बानो। और आज के प्रोग्राम का उन्वान है रहमते खुदा और बंदे की उम्मीदें। सामईन, जिंदगी एक सफर है। इस सफर में कभी खुशियों के फूल खिलते हैं और कभी गमों के कांटे रास्ता रोक लेते हैं। कभी कामयाबी हमारे कदम चूमती है और कभी नाकामी दिल को बोझल कर देती है। लेकिन एक चीज है जो इंसान को टूटने नहीं देती, और वो है उम्मीद। उम्मीद इंसान के दिल का वो चिराग है जो अंधेरी रातों में भी रोशनी देता रहता है। अगर उम्मीद बाकी हो तो वीरान रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो रोशन रास्ते भी अंधेरे लगने लगते हैं। सवाल ये है कि बंदे की उम्मीद का सर चश्मा क्या है, ये उम्मीद कहाँ से पैदा होती है? इसका जवाब कुरान देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। गौर कीजिए, ये खिताब सिर्फ नेक लोगों से नहीं बल्कि ये खिताब उन लोगों से भी है जिनसे गलतियाँ हुई, जिन्होंने गुनाह किए, जो जिंदगी के किसी मोड़ पर भटक गए। गोया अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को उम्मीद दिला रहा है। सामईन, अगर दुनिया का कोई इंसान हमसे नाराज हो जाए तो मुमकिन है कि वो हमें माफ ना करे, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उस माँ से भी ज्यादा मेहरबान है जो अपने बच्चे पर मेहरबान होती है। सोचिए, माँ कितनी मोहब्बत करती है। बच्चा बार बार गिरता है, माँ बार बार उठाती है। बच्चा गलती करता है, माँ फिर भी सीने से लगा लेती है। फिर वो रब कितना रहीम होगा जिसने माँ के दिल में मोहब्बत रखी है। इसी ख्याल के साथ अब वक्त हुआ है आज की पहली कव्वाली का। मुश्किल कुशा ओरे नूरे खुदा ओरे रंगरेजा। फिल्म है जॉली एलएलबी, शायर हैं जुनेद वासी, आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफा, कादिर मुस्तफा की। समाअत कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है शान फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राहुल देव वर्मन ने।

आशा भोंसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में सुनिए राम बलराम फिल्म का ये नगमा, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

बपी लहरी और उषा उत्थुप को सुनिए वारदात फिल्म से। रमेश पंत के लिखे गीत की धुन बनाई है बपी लहरी ने।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सलीम अल्लावाले का तबला वादन, ताल तीन ताल में।

Dinner,

मायशीगत तिपल्ली चौपल्ली उसमें एक दुपल्ली दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नारा दिन्नार

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन। तबले पर तीन ताल, वायलिन पर लहरा दिया था प्रवीण शिवलिकर ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देख।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि

0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: West Uttar Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में इस समय 11:10 और 5 सेकंड हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इन्हीं मीटर्स पर हम पुनः उपस्थित होंगे।